एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 1 अगस्त वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हैं हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनके दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को

0: देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 31 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं आइए अब सुने कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है मदद की भावना।

स्नेह प्रशंसा से नहीं सेवा से दर्शाया जाता है। जीवन प्रेम है और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। ये सब

0: पंक्तियां जीवन में हमने बहुत बार सबने सुनी है, लेकिन जीवन में इन्हें अपनाया कितनी बार है, ये बहुत आवश्यक है। अच्छी बातें फूलों की खुशबू की तरह होती है, बहुत समय तक हमारे साथ साथ रहती हैं और यही चीज उनका जीवन में अनुसरण करने का कारण भी बनती है। हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। मनुष्य समाज में रहता है और हर दूसरे पल उसे किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में जब मनुष्य के मन में दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने, वही मदद करने की भावना पैदा हो जाती है, तो वो मनुष्य मानवता के सबसे बड़े स्तंभ पर खड़ा होता है। दूसरों की मदद का भाव हर धर्म में है। सभी के साथ दया भाव दिखाना और उनसे प्रेम करना धर्मों ने सिखाया है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल वही व्यक्ति कृतज्ञता से भर नहीं जाता, बल्कि ईश्वर भी मदद का हाथ बढ़ाकर पहल करने वाले से प्रसन्न होता है। और ये एक कर्म का फल है कि जब कभी आप मदद को पुकारते हैं तो कोई न कोई हाथ आपकी ओर भी अवश्य बढ़ता है। दूसरों की मदद हमेशा निस्वार्थ भाव से कीजिए और देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि देगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय था मदद की भावना। श्रोताओं, आइए अब सुनें भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

श्री रामचरित मानस गान का ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती में बात। 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर, प्रातः 9:30 पर और पुनः 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर, प्रातः 9:10 पर और पुनः 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। वहीं 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। 5:30 पर और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुनेंगे शाम 6:45 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का समय रहेगा शाम 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। वहीं रात्रि 10 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे दिनभर के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम खेती नी वाद का।

0: आप सुन रहे थे गायत्री शर्मा की आवाज में ये लोकगीत कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं वागड़ी गीत गायन पंकज देवरा से।
1: मेरी पहली रचना है इंद्र राजा से बरसात के लिए कामना करती हुई एक किसान की बेटी।

धरारो भाग हे जाग्यो मारवाड़ में चांदो चमक्यो मरुधरारो भाग हे जाग्यो चौमासा में पानी पड़ गयो थार मरुस्थल रा

झुम झुम कर तो झणकारो यो माँ करणी रिशान। बेठ पगा में बोले के बेठ पगा में बोले मीठो मरुदर।

खमाकोर मेरी तीसरी रचना है। जब सैनिक सीमा पर होता है देश की रक्षा के लिए, तब उस पत्नी को अपने पति की किस प्रकार से याद आती है, वो क्या कहती है, इस गीत में सुने। समय

कार्यक्रम वातायन यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत आपने सुना। हजरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: चलो।
1: पाकीजा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना। कैफ भोपाली के बोल थे, संगीत गुलाम मोहम्मद का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में काजल फिल्म का गाना। साहिल लुधियानवी के बोल रवि की तर्ज़।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0: को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुरनूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुरनूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़

0: से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष

0: ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण। पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज

एक ऐसा अध्याय है जिसने ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिला दी थी। आज का दिन समर्पित है असहयोग आंदोलन को। श्रोताओं, साल था 1920 और तारीख थी 1 अगस्त। इसी ऐतिहासिक दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। सोचिए, एक ऐसा विचार जहां अन्याय का मुकाबला किसी बंदूक या तलवार से नहीं बल्कि एक सरल और दृढ़ संकल्प से करना था कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे।

श्रोताओं बात कर रहे थे असहयोग आंदोलन की। यह केवल एक आंदोलन नहीं था बल्कि भारतवासियों के भीतर सोए हुए आत्मसम्मान और सांस्कृतिक स्वाभिमान का पुनर्जागरण था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और भारतवासियों के सहयोग से ही शासन चला रहे थे। गांधी जी ने इस मूल मंत्र को पहचाना कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो उनका शासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। दोस्तों 1 अगस्त 1920 यही वह दिन था जब गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने के लिए एक ऐसा हथियार उठाया था जिसमें न कोई लाठी थी न कोई बंदूक। वह हथियार था असहयोग यानी सहयोग ना करना।

सोचिए श्रोताओं, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत जिसकी बंदूकों की गोलियां कभी खत्म नहीं होती थी, जिनके पास सेना थी, कानून था, जेलें थी, और दूसरी तरफ थे नंगे पैर चलने वाले किसान, अपनी पढ़ाई छोड़ चुके कॉलेज के छात्र, घर का चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर आई हमारी माएं बहनें, और हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का चरखा। कोई हथियार नहीं, कोई बारूद नहीं, बस होंठों पर एक वाक्य, हमारा विरोध हिंसा से नहीं, हमारे खामोशी और असहयोग से होगा।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम कुछ दिल से में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, रॉलेट एक्ट का वो काला दौर, जलियांवाला बाग में बहा मासूमों का वो लाल खून, भारत माता का दिल छलनी था। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने देश के सामने एक ऐसा विचार रखा जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज हम पर राज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, वो राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उनके स्कूल, उनकी अदालतें, उनके कपड़े और उनके कानून का बहिष्कार कर दें तो यह हुकूमत खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगी। और फिर क्या था श्रोताओं, एक ही रात में पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के नीचे आ खड़ा हुआ। चौराहों पर विदेशी कपड़ों के ढेर लगाए गए, एक माचिस की तीली जली और विदेशी मखमली कपड़ों की राख के साथ अंग्रेजों का अहंकार भी जलकर राख हो गया। बस ये समय भी यही मांग करता है कि हम अपने बीच नफरतों को न आने दें।

श्रोताओं, आज जब हम 2026 के इस आधुनिक और आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो असहयोग आंदोलन हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है गलत के सामने कभी मत झुको। यह सिखाता है अपनी देशी चीजों पर गर्व करो, स्वदेशी अपनाओ और

सबसे बड़ी बात यह सिखाता है कि जब पूरा देश किसी एक नेक काम के लिए साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसके साथ ही श्रोताओं, दीजिए मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे सीमा मिश्रा व साथियों की आवाज में।

0: सीमा मिश्रा व साथियों की आवाज में सुन रहे थे आप ये लोकगीत कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत में प्रातः के 9 बजे हैं। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर सवेरे के 9 बजने वाले हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की देशवासियों से अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्यस्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने का प्रयास करता है। अधिनियम में

0: मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक वीडियो में उन्होंने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को, नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन नेटवर्क ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में एआई आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेज और थर्मल कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश भर में आज से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान शुरू हो रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों की नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि, ई गिरदावरी की जाएगी। राज्य खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गिरदावरी से प्राप्त आंकड़े, फसल उत्पादन के आकलन, नीति निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आधार बनेंगे। देश भर में आज से स्तनपान सप्ताह शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। साथ ही मीडिएशन न्याय तक आसान और तुरंत पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। ये बात उन्होंने जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल, वाणिज्यिक और आधारभूत संरचना से जुड़े विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ऑनलाइन मध्यस्थता में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
2: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर

0: समाधान की बात करती है। यह केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वह सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए है। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिल जाते हैं। ऐसे समय में मध्यस्थता एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
1: सम्मेलन में भारत और विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मध्यस्थ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिन के उदयपुर और राजसमंद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज उदयपुर के दूध तलाई में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करने के साथ चंदन वन में पौधरोपण करेंगे। इसके बाद झाडोल क्षेत्र के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री उदयपुर में नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके बाद राजसमंद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना के 39 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की रोजी रसेल को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में अरुंधति ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से पराजित किया था। आज रात भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड की चॉन्टिल रीड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं अदनान सामी के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे, कार्यक्रम सुगम संगीत में।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता।

कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की, जिसे बचपन में महाजबी बानो कहा गया और बड़ी होकर वो कहलाई मीना कुमारी।

मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थीं। उनके बचपन का नाम था महाजबी बानू। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महाजबी। इसके अलावा बाकी 2 बेटियां थीं खुर्शीद और मधु। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महाजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया। मीना कुमारी तब तकरीबन 5 बरस की थी और उनके पिता अली बख्श रूपतारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महाजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महाजबी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महाजबी ने फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। फिल्मी दुनिया में आने के लिए नन्ही महाजबीन का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इसके बाद नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और जादुई चिराग। प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था, इसीलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो बतौर हीरोइन मीना कुमारी को मौका दिया। बैजू बावरा मीना कुमारी की पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए हासिल किया।

मीना कुमारी ने ज्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थी, समाज और हालात की सताई हुई एक दुखियारी स्त्री जिसके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफें आई हैं और आई हैं ठुकरें।

मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आजाद

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम, गुरुदत्त की ये फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
1: मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
2: कुछ भी नहीं देख पाए।
1: क्या बकवास करती हो, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूँ? इतनी फुर्सत नहीं मुझे।
2: सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
1: ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझा खाए क्या?
2: पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी? धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया, क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं?
1: जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरू से सीखना पड़े, लाना तो
2: रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो।
1: मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों के ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं।
2: सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों?
1: सेवा करना जानती हो तुम लोग?
2: स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? जैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे?

लोगों ने ये भी कहा कि फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की ये भूमिका, जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी, असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी, जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थी। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान।

कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीनों नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आरती

और फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं, मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहेब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल।

लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी।

मीना कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीजा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीजा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलस्म।

एक जगह मीना कुमारी ने लिखा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी, 31 मार्च 1972 को महज 39 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, उन्हीं के स्वर में।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

0: रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं। अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हो आलोक, बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया। दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहां छोड़ आई थी, जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी, आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं, इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे। पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा। और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था।

सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था, नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं। और एक हम दोनों, बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ न कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच

होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं। या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोच

लेकी अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हाँ, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

0: दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ न कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।
1: ए दिल

0: ये मेरी जान।
1: ए ताई, दादर उतराए जो तुला। पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहां कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच।

अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया, आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है, शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच। वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे पेश है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास द्वारा गाई कुछ गजलें।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: चंदन दास की आवाज में सुन रहे हैं आप गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत में।

आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी नगमे के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति में आज आपको सुना रहे हैं ओम शांति ओम से ये गाना श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में सुनवा रहे हैं अगला गीत आपको फिल्म कसूर से। शब्द रचना है समीर की, धुन है नदीम श्रवण की।

0: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगली कड़ी में आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम और अलका याग्निक के गाए इस गीत को फिल्म किस्मत कनेक्शन से। बोल हैं शबीर अहमद के, संगीत है प्रीतम का।

गीतकार जावेद अख्तर के लिखे इस गीत और शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजे इस गाने को आप सुन रहे थे फिल्म कुछ ना कहो से। आवाजें थी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं अनुपम अमोद के गाय

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरूषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्वी शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा

0: राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिल ढामी के बोल थे गजल फिल्म की, ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे?
2: मालूम नहीं, चलो मुझे घर पहुंचा दो।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में भरत व्यास के बोलों को सुर में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपनी
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
6: प्यार का राग सुनो।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रहे
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा गीता, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे।

0: शासन की बनी तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों ने। साहिल उद्यानवी की रचना आपने सुनी फिल्म बहू बेगम से।
1: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो
2: रंग लो रंग लो जी आज मन रंग लो तन रंग लो
1: आज नगदी में रंग है बाहर है गली गली देखो रस की फुहार है
2: गली गली देखो रस की फुहार है
1: ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है।

मैं चुप रहूंगी स्वयं का गीत था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम।

भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन नाज़रीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाज़ो अंदाज़ देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छलकाई ये बदरिया सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा शेर से छलकते हुए जज्बात उस महज़बी के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें। दो सितारों ने कहा ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन की सदगुद को बेगाना कर दिया, वक्त आज भी वहीं ठहरा है खामोशी में, कभी धड़कनों में कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है, बुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज तू आए। तो श्रोताओ, आज बात है एक नाज़नीन चेहरे की जो जब भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली न हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी, उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं, उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओं जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीजा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीजा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज सुनीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं कि सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी

फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुनीला सफत कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नजर आ रहा है, जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं, वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थी, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपनी जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं, और बताना है इस गीत के गीतकार कौन है और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोता और लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दद को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ लगता था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती है मीना कुमारी की, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती है, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थी और मकबूल भी थी, तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकिजा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था। चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

गीता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं दिल अपना और प्रीत पराये फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है लेकिन करुणा के मन की पीड़ा मौन समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है लता मंगेशकर जी की आवाज और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म

लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज, और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पूरा जीवन इसी तरह खत्म हो गया, चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें, और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की, उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं, और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती है, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थी। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हूँ, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है, जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पांव मैंने देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत उतारियेगा, मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आजाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नजर आती हैं और खिलखिलाती हुई नजर आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज्यादा

आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं की, उस गीत को किसने गाया? नूर जहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूं का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था, ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओं मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थी उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही है। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ।

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोता, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती है, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

कुमारी जी बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की, मीना जी और कमल अमरोही जी की कार

मध्य प्रदेश की शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है, ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगी रात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती है मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हूँ।

सभी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है। जहाँ तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अभी ही

नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर। ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है।

बादल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हम सबकी एक जरूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियां बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोदकर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोदकर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके इजाद किए जा चुके हैं। चलिए खुद से पूछें, वर्षा जल के संग्रहण में हमारा अपना कितना योगदान है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रूपये कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार

0: रोजगार, व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केन्द्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया

0: कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माही में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में

मंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा

0: शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरूषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रूपये कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोलते शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

निगार शकील बदायूं मौसकार हिमंत कुमार गीता दत्त की आवाज में सह बीबी और गुलाम फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरूह सुल्तानपुरी के भूलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबत के इस गीत के साथ ही श्रोताओ, आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम, श्रोताओं आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो सुनिए प्रोग्राम, देखिए कहीं आपके पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओं, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस वीर शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओं, आलिया नगर के गांव से इसी गीत को पसंद किया भाव साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रंजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज गुलजार के बोल किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे। ये गीत आंधी का और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया ने। वारंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी अश्विनी कुंडलीक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाह बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला सुमेध कुमार दामोदर साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की। ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

मिर्जा सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमू की ये फरमाइश है। शीतलानगर दो से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हम सफर। इस फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से। विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र नागेश, पारस जयेश, ऋषभ संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियों फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। सहल लुधियानवी की बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाह ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाह सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमाइश थी।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी, द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रहेगी।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी मैं ही कहूँगा, मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार

0: और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
1: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
0: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
1: जी जी जी, ये बात नहीं है।
0: तो वो बात क्या है?
1: वो बात ये है। अभी कहता हूँ।
0: कहो।
1: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: जहाँ हालत तक तो आ गई है।
0: तो जबान पर ले आओ।
1: अच्छा,
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो
0: जी, कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था।
1: कहो ना आइवन, फिर किस मुंह से कहूँ? कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
0: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नतालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नतालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
1: तो क्या नतालिया मुझे पसंद कर लेगी?
0: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा। मैं अभी नतालिया को भेजता हूं।
1: जी। चुबोकोव चले गए, अब नतालिया आएगी।
0: ये क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे हो हो हो कांप रहे हैं, मेरी भाई आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमो विराजमान है।
1: आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नतालिया?
2: जी हाँ।
1: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
1: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
1: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
1: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाओ।
1: जी जी जी, जी। आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है। आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
1: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
1: जी।
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
1: कुमारी नतालिया।
2: जी।
1: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है।
2: आपके लिए कंबल है?
1: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है? आप इस तरह घबराते हो?
1: देखिए कुमारी नतालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे, और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत है, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
1: जी,
2: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
1: जी हाँ, क्यों?
2: नहीं, सोच कर बताइए।
1: आप भी कमाल करती है, बड़ा सोचने की कौन सी बात है। और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
1: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
1: अजी, मैं चेरी को उस बगीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बगीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
1: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बगीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
1: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
1: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
1: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए तुम्हारी नतालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की

0: कहानी पड़ी।
1: देखिए मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करूँ।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतने बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
1: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
1: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है मैं आपको भेंट कर सकती
0: हूँ। कुमारी निकालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
1: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बगीचा हमारे अधिकार में चला रहा है आज इसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकाल क्या हुआ, यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें
1: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूँ कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
1: है।
0: नहीं जी नहीं जी नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
1: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी, कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
1: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं।
0: ओ, मेरे गले में कांटे उगे हैं, जरा पानी पीऊं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
1: ये चीख आपकी है मगर बागीचा हमारा है।
0: जी नहीं, वो मेरा है।
1: वो बागीचा हमारा है और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
0: क्या?
1: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
0: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
1: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं।
0: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
1: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
0: कुमारी निकालिया, कुमारी निकालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
1: नहीं, हमारा है।
0: जी नहीं, मेरा है।
1: हमारा है।
0: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: जी क्या हो रहा है
1: बाबा, आप जो इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका।
0: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
0: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे
1: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
0: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
0: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लपो मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने के बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
0: जी हाँ, क्यों नहीं, बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
0: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
0: बाबा, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं हूं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
0: मैं तो जैसे आपके आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
2: क्या कहा?
1: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूं?
0: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
1: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूं?
1: हाँ,
2: लेकिन मैं क्या करूं?
1: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाए।
0: खोद लाए? कुमारी निकालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
0: आप मेरी यूं खिलना लाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
1: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी

0: हाँ, इसका फैसला अदालत में ही होगा।
1: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालत में ही।
0: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए, जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस।
1: ओ, तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
2: इनके घराने में ठीक इसका था।
0: हाँ हाँ, इसका दादा संखी है, दादा संखी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
1: अरे, तुम्हारा तो बात पत्ते वास क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
2: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिस थी, और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
0: मेरी बड़ी ढंग था जो निर्णय लगी, और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी का होने।
1: अरे तुम मक्का, अरे भी,
0: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, ये मेरी टोपी, अब दरवाजा की तरह
1: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
0: हाँ हाँ, जाओ,
1: इतना और सुनते जाओ। हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं, टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
2: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
1: चला गया कमीना कहीं का।
2: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
1: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
2: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
1: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
2: कैसा प्रस्ताव?
1: अरे, ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
2: बताया?
1: अरे, मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
2: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
1: अरे अरे, क्या हुआ बेटी निकालिया, क्या हुआ?
2: बाबा बाबा, उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
1: क्या, अब उसे मैं बुलाना जाऊं?
2: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
1: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला, और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
2: बाबा, आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
1: अरे बेटी मिताली, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ?
2: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
1: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
2: आज इन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
1: निटालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त भी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
2: वो कब आएंगे?
1: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
2: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
1: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हुई।
2: कैसे?
1: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली खटी सुनाई, उसे अपमानित किया, और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
2: क्या मेरे कारण?
1: और नहीं तो क्या?
2: बाबा, अब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए।
1: अच्छा बाबा, अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो, वो आ गया, और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
0: मेरा दिल बड़े जोरों से धड़क रहा है,
2: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
0: वो बगीचा मेरा है।
2: जी हाँ, वो बगीचा सच

0: कुछ आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया,
1: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं। लेकिन वो बागीचा, वो बागीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
0: जी नानी, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा करते।
1: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब कोई और बात कीजिए।
1: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
0: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चला? आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
1: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
0: क्यों?
1: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
0: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
1: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
0: डब्बू आपने लिया किससे था?
1: अजी, ये पहले मेरे नोब के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरे नोब इससे बिछोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरे नोब के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ न कह सका।
0: 125 रूबल?
1: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
0: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
1: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
0: पर आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
1: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
0: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला?
1: जी
0: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक पूरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
1: तो सुन लीजिए कुमारी नितालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
0: जबड़ा छोटा है?
1: जी,
0: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
1: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
0: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
1: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
0: जरा ये भी करवाइए, आपका वो लंगड़ा खास का मारा डब्बू
1: जी
0: किस राजघराने में से है, किस स्कूल का दीपक है?
1: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
0: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
1: मैं ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा?
0: आप होंगे, होंगे क्या आप हैं?
1: जी
0: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाद मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
1: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
0: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बढ़ाते चले जा रहे हैं।
1: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
0: लेकिन सच क्या है?
1: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
0: कहाँ छोटा है?
1: छोटा है।
0: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
1: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली डूबने लगा।
0: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं।

0: ओह मेरा दिमाग फट रहा है, अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप यह ना मानेंगे कि हमारा तलवार के डब्बू से हजार गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं हूँ।
0: यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे गणपति गणपति गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है, और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं हूँ।
0: अरे अरे अरे ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं। पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं?
2: तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान कर।
0: देखिए मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था, और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर को मारा था।
0: काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर मेरा जोर तोड़ने लगा।
1: दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
2: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं, क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
0: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
0: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
2: तुम्हारा तो सर
0: देरी कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए। और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। और मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
2: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
0: मेरी टांग मेरा दिल घाट हो गया।
2: डॉक्टर
1: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। बाबा जरा देखिए तो उन्हें हुआ क्या है। आइवन बाबा, आइवन चले गए।
0: क्या मिताली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो, तुम मेरा दिल टूट गया। बेटी तुम मेरा एक काम करो।
1: क्या बाबा?
0: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
1: जाने दीजिए बाबा, अब मरे को क्या मारेंगे?
0: अरे बेटी मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
1: अपने लिए?
0: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
1: नहीं बाबा नहीं।
0: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू भी ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
2: ना तो ना।
0: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
1: जिंदा है।
0: लो लो पानी पी लो, पानी पी लो।
2: मैं कहाँ हूँ? तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। अपने घर से उठ के बैठो और मितालिया से ब्याह कर लो।
0: क्या?
2: हाँ बाबा, हाँ मितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
0: क्या सच?
2: चुप मितालिया, बेटी लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
1: बाबा
2: आइवन जी ये

0: मिताली का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
1: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा आ गया।
0: अच्छा?
1: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है
2: जी। मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
0: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
1: हाँ, याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है
1: जी। नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहता हूँ घटिया है।
1: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
0: तुम लोग
1: जी है।
0: मैं ही

अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपके संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे,
3: हाँ,
2: और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, हाँ, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
2: जी।
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
2: जी।
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बीड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बातें बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब घबू जब होश ना था कुछ बात हुई, हाय मैं, ये जैसे गया।
2: हाँ।
3: अब आंखों के बनी तनम को बहुत भाव गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में मैं देखो चली।

0: कहां लाली गई। अब ये जो आता है
1: हाँ।
0: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक में आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट दोबारा लेते हैं। तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या कि जैसे कुछ फेज लोग भूल जाते थे
1: जी,
0: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूँ। आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापिस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
1: नहीं आती है। जी जी जी
0: जी।
1: तो कोई गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, या एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
0: एक दिन।
1: अच्छा,
0: एक दिन, एक मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विथ सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विथ कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए। और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना दो दिन में भी किए।
1: हाँ जी।
0: तो वो ऐसा नहीं है, वो दो दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
1: जी,
0: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं, तो हम लोग उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था?
0: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल।
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा
1: प्रेमिला जी,
0: हाँ प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज्यादा बेटर है,
1: मिलता है,
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोले नहीं बोलो तानसेन क्या बात है? मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो? मैं बोला अभिजीत ज्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये हमारा काम है,

0: म्यूजिक का हमारा नहीं है, म्यूजिक का काम है म्यूजिक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया। तो ही इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तानसेन जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उसने।
0: नहीं नहीं, बहुत
1: आवाज में जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट हुई,
1: बिल्कुल सूट हुई।
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ।
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ मगर पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भड़के।

0: अमर प्रेम का।
1: अमर प्रेम का एक गाना है, ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगरी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया, जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आरडी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आरडी बर्मन साहब
1: से, आरडी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने, बोले चंद साहब के लड़के बहुत बड़ा, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया, इतने में अमित नहीं जाएगा। तो उनको बोला देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो, टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं, नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मित्री, हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही।
1: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही
0: जी,
1: तो जिसका वो गाना था हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने ने दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर
0: जी,
1: और नीरज साहब के साथ में एक पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था जब

0: रेनु।
1: क्या बात है,
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए, आए हम तो सबको गले लगाए, हमें ना

तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहां जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के साथ की मैंने सुना भोपाली माया।

0: गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के साथ आपने काम किया है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी।
1: रानी मलिक थी जी,
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ पहला गाना था। अच्छा। इससे पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी रहा तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये था। हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा?
0: नहीं, वो गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूं शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं नहीं नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया। और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखा आज सुपरस्टार है वो।
1: जी जी जी, तो एक गाना सुन लेते हैं, कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना इसी पिक्चर में, धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम।

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा
0: जी।
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी,
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही।
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है
0: जी, जी।
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नरूला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा जी, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मनर अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौर जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट, ज्वली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, प्रमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है।

0: शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं नहीं वो बात नहीं, वो
0: उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट, यार वहां जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना,
1: और कला के प्रति समर्पण,
0: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम है, फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है दिलीप सेन साहब की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलादे हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे और आपके घराने की जो विरासत के कारण

0: आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में, लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है
0: जी।
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक करवे नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके ज्वाइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं, मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब राजस्थान हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने प्रयोग किया?
1: नहीं, मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी,
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, मैं किया ते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को, हम मेरी टोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
0: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वही
1: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक चुने के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं, आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: जी तब लगेगा जब जी वाला काम दूसरों का दिल जीतोगे।
0: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, कौन सा गाना?
1: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
0: बहुत सुंदर गाना,
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते
1: हैं। देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक।
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का संगीत में रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है।
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के
1: बेटे भी आने वाले हैं अभी जल्द
0: जी। जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और आपके परिवार को और नए गायकों नए संगीतकारों को आप क्या संदेश

0: संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो आज लुप्त होते जा रहा है, मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए, कविताओं की मालूमात रखनी चाहिए, भाषाएं हमें जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 रागे या 50 रागे या बेसिक दो चार पांच, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो चार पांच रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कोर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए,
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है, हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारा सर्वधर्म सम्मान है, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है, प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश।
1: मैं आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है। जैसे कि जटा जब प्रवाह वितस्थले वीरो विलंब विलंब भूतम भूतंग तुंग मार जटाटवी गल ज्वल प्रवाह वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी,
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर के झपेट दिल दुष्ट को दपेट चले पेट चकल न बजे नक चला तो दिन तो खोद कटा कट गिरी से न पटा पट पटी पटी पट कभी गुह की लकार की लजू जी लकार पड़ी भीड़ भी लगा कटे रख दिन तह तेज को कुमार करी को बिस्मार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारा सीताराम को उजारू रघुवंश को अनियारो जन पे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंड दंड न उमन न सुख न नया कल को भूपत सर तो को ना वेलो अल बेलो ना रेलो रूप रेलो चल राके सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खले खानी झंडी पति सो कमंडी खोल खानी देने कर को। ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का कहीं का नहीं, ये हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चले मेरे साथ तेरे बाप को भी मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विभूत भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी है आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज में करता था और उसके बाद उसमें आजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह आकाशवाणी वासवाड़ा का FM माही चैनल है, FM 106.3 MHz की आवृत्ति पर। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम गोफन के अंतर्गत आप सुनेंगे आज की सभा के शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आइए हम आपको ले चलते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण की ओर। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम 5:30 पर और रात्रि के ठीक 9:00। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से शाम के ठीक 7:00।

शाम के 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत का। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

स्पष्ट विवरण की ओर। प्रातः के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का। खेती में बात आप सुन पाएंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आपको सुनवाया जाएगा 6:50 पर। और 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन।

समाचार प्रभात आप सुनेंगे प्रातः के ठीक 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम कुछ दिल से की प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी 8:15 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा प्रातः के 9 बजे का, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत का आनंद ले पाएंगे आप प्रातः के 9:10 पर और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 12 बजे से आप सुन पाएंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी पासवाला के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए। अब प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में गाए कुछ चुनिंदा गीत।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR। न्यूज ऑन AIR आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में गाए इसी गीत के साथ राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए

0: अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
2: Go home. I experience it too. I experience it.

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की, पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विमानन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। श्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में बने नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2014 से देश में 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार में छोटे शहरों के लोग भी हवाई सफर कर रहे हैं।
2: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल के जरिए इस देशव्यापी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा स्थानों को जोड़ते हुए यह अभियान नशे के सेवन के खिलाफ सामूहिक संकल्प की एकजुटता को मजबूत करता है। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह के इस अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। इन सभी के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने को लेकर सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
3: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति, आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कालका माता नर्सरी परिसर से इस अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस साल मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस मिशन के तहत अब तक 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अरावली संरक्षण के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और

0: बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश भर में आज स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके तहत 7 अगस्त तक लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस दौरान प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान का महत्व बताया जाएगा। अलवर के मदर मिल्क बैंक में स्तनपान सप्ताह के दौरान वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और रैली सहित अन्य आयोजन होंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफरल परिवहन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सुरक्षित प्रसव और जननी एक्सप्रेस सेवाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश सहित परिपत्र जारी करने को कहा। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन से वीसी के जरिए हुई इस बैठक से मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और हाइपरटेंशन के लिए एसओपी जारी करने को कहा, जिससे प्रदेश भर में एक समान उपचार प्रोटोकॉल की पालना हो सके। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से कई जिलों में आज सर्वे की कार्रवाई की गई। राजसमंद, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और जयपुर सहित कई जिलों में एक साथ जांच की। इसमें कई मामलों में कर कानूनों के उल्लंघन और कम टैक्स दिखाने और देने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन मामलों में दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। विभाग ने कहा है कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्सेंडल एट AIR न्यूज अंडरस्कोर जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। श्री बागड़े ने SKRAU में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 40 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। करीब 28,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कृषि प्रशिक्षण किया है। श्री बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
1: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि SKRAU को इंडिया AI मिशन से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी मिली है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों और कृषि शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में केंद्र सरकार और MCC ने वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें छात्र घर बैठे ही फ्रीज और फ्लोट विकल्प ऑनलाइन चुन सकेंगे। विद्यार्थियों को कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। देरी होने पर संबंधित सीट स्वतः ही निरस्त हो सकती है। श्री गोयल ने प्रवेश शुल्क की जानकारी पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देशभर से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीतापुरा स्थित JECC में हो रहे इस सम्मेलन को आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। श्री देवनानी ने इस मौके पर प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन यहां की पहचान और संस्कृति है। कैटरिंग उद्योग के लोग इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों से स्वाद के साथ साफ सफाई, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T-127 दो शावकों के साथ नजर आई है।

0: इससे वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों में उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावकों की सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T-127 लक्ष्मी T-8 लाडली की बेटी है, जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, जूडो और मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबौरिया ने स्वर्ण, नीरज चोपड़ा ने रजत, यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित विभिन्न नेताओं ने देश का गौरव बढ़ाने पर इन खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत के लिए भी प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। उनका मुकाबला आज इंग्लैंड की चेंटेल रीड से होगा। 8 गोल्ड, 15 सिल्वर और 7 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में भारत फिलहाल 6 स्थान पर बना हुआ है। फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस कल मनाया जाएगा। देशभर में अगस्त के पहले रविवार को ये दिन मनाया जाता है। मैत्री दिवस दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। ये दिन एक दूसरे से जुड़ने, मित्रों के आभार व्यक्त करने के साथ ही आत्मीय और खुशनुमा माहौल प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने बीकानेर जिले में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण हुआ, नशा मुक्ति अभियान को गति मिली, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हुई और विभिन्न विभागों ने जन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रस्तुत हैं बीकानेर जिले की प्रमुख गतिविधियां। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय में औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय परिसर में पारिजात, अर्जुन, बिल्व, करंज, मीठा नीम और खेजड़ी सहित अनेक औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने इन पौधों के औषधीय महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका की जानकारी दी और अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों को भी बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। देवस्थान विभाग के अनुसार बीकानेर जिले के 205 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के ठहरने, सुरक्षा, अन्य आवश्यक सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

0: अधिकारियों और कर्मचारियों ने दहेज नहीं लेने और नहीं देने की शपथ ली। इस अवसर पर दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया गया। विभाग की ओर से सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और छात्रावासों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक में नशे की रोकथाम और जन जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रशासन, समाज, शिक्षण संस्थानों और आमजन की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई, जागरूकता अभियान और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है तथा सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं कुलानुशासक कार्यालय का शुभारंभ किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर अभ्यागत केंद्र भी शुरू किया गया है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य आगंतुकों को आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। जिले में जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रत्नू ने सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म और मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम में हेल्प डेस्क स्थापित करने, वृद्धजनों और महिलाओं को प्राथमिकता से सहायता उपलब्ध कराने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों छतरगढ़ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थानों और ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, अन्नपूर्णा रसोई और अन्य कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आमजन से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सेवा शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने पर बल दिया गया। इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर, राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत कीनी। पर्यावरण बचावण न सगला ने भेली जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण माथे जोर दीनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलना माए भारत रा खिलाड़िया रो चोखो खेल रो दर्शाव। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि देश में विमानन हलको तेजी बढ़ रियो है। वह कहो कि उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर न किफायती बना दिनो है। वह आज आंध्र प्रदेश रा भोगपुरम माई बनाई जानुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि साल 2014 माए देश माए 74 हवाई अड्डा हा, जानी तादाद अब बेधर 166 वे की है। वह कहो कि एनडीए रा राज माए नाना शहरां दी जनताई हवाई सफर कर रही है।
2: एक समय था जब हवाई उड़ाने सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान री वर्चुअल तरीकाओं शुरुआत करण रो कार्यक्रम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा माई भारत पोर्टल रे जरिए वो अभियान आखा देश में चलायो जावेला। 10,000 मोमबत्ती।

0: छोड़ता था का वो अभियान नशोकरण रे खिलाफ भेड़ा संकल्प ने मजबूत करेला। 100 सप्ताह रा ई अभियान रे दौरान हर दीतवार ने पदयात्रा ध्यान सत्र सांस्कृतिक और खेल आयोजन सागे न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखर नशो नीकरण रो संदेश दियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहे है कि पर्यावरण ने बचावण री सगला री भेड़ी जिम्मेदारी है जिनमाई हर रहवासी री भागीदारी वे होनी चाहिए। वे आज उदयपुर में राज्य स्तर रा वन महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री शर्मा कहे कि आवती पीढ़ियां सारू सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने बाबत सगला ने मिलकर कोशिश करनी वेला।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री पौधों रो पर कालका माता नर्सरी परिसर इनी शुरुआत की। ध्यान जोग है कि मिशन हरियाणा राजस्थान रातेत ई चौमासा माय 10 करोड़ पौधा रोपण तय करीचियो है। ई मिशन रातेत हाल ताई 20 करोड़ बत्ता पौधा रोप दिया चिया है। अरावली री डूंगरिया ने बचावन सारू 30,000 हेक्टेयर बत्ता हल्का माय पौधा रोपया जावेला, जबकि उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही और बांसवाड़ा माय चंदन वन बनाया जावेला। प्रदेश में आज स्तनपान सप्ताह शुरू हुयो। इना तेत बच्चा ने मारो दूध पावन रे बारा माए 7 अगस्त ताई जाग जगाई जावेला। इस दौरान नुवी मायड़ा दूध पावन वाली मायड़ा अरवाना परिवार वाला ने स्तनपान रा महत्व री जानकारी दी जावेला। इस सप्ताह रे दौरान अलवर रा मदर मिल्क बैंक माए वर्कशॉप सवाल जवाब री होड़ और रैली समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। प्रदेश में हिफाजत सागे मां बनवाओ जुड़ी सेवाओं रो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जायजो लीनो। वे आस वाली लुगाइया ने टीम सर बेहतर इलाज सारू रेफरल परिवहन तंत्र ने मजबूत बनावन रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव हिफाजत सागे जापो करावन और जननी एक्सप्रेस सेवा सारू एकदम साफ दिशा निर्देश समेत सर्कुलर जारी करने बाबत कहो। जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट सीएमएचओ और दूजा अहलकार सागे बातचीत करता था। मुख्य सचिव घनी जोखिम वाली आस वाली लुगाइया माए खून री कमी और हाइपर टेंशन जुड़ी एसओपी जारी करन रा हुक्म दीना। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ रे खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रातेत वाणिज्यिक कर विभाग री ओर आज राजसमंद बाड़मेर प्रतापगढ़ जैसलमेर और जयपुर समेत कई जिला में सर्वे री कार्रवाई करी जी। इस दौरान कई मामला में कर कानून नी मानबा और टैक्स री कम जिम्मेदारी बतावन से री की गड़बड़ियां सामने आई। आम मामला में कागजात री और जांच करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज बीकानेर रास्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुआ। वे वठे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र रो उद्घाटन कीनो। ई मौके राज्यपाल कहो के ओ विश्वविद्यालय लारा 40 साल में 28,000 बत्ता विद्यार्थियों ने खेतीबाड़ी री सिखावण दीनी। श्री बागड़े कहो के विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावनो आज रा भगत री सब मोटी जरूरत है।
2: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल उच्च माध्यमिक हमारे जूनियर कॉलेज यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है अभ्यास करती है उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने अध्यापकों ने यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
0: इमोक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के SKRAU ने इंडिया AI मिशन खेतीबाड़ी में जुड़ियों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलन री मंजूरी दीनी है। वो सेंटर खोलन सारू करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आवेला।

0: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 माए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक दफा चावन और ऑनलाइन तरीकों कागजात रो सत्यापन करावन री नई व्यवस्था शुरू की है। इन तहत विद्यार्थी घर बैठिया ही फ्रीज और फ्लॉट विकल्प ऑनलाइन तरीकों चुन सकेला। नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल प्रदेश रा सगड़ा मेडिकल और डेंटल कॉलेज रा नोडल अहंकारा सागर मीटिंग की वे कागजात रो ऑनलाइन सत्यापन ते मियाद माए पूरो करन रा हुकम दीना। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन रो राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर माए राख्यो जा रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इनरो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे एक प्रदर्शनी री शुरुआती कीनी। कार्यक्रम में देवनानी कहो कि राजस्थान रा पारंपरिक व्यंजन अठरी पिछाण है और कैटरिंग उद्योग रा लोग इन देश दुनिया ताई पुगावन रो काम कर रहा है। वे कैटरिंग एंड मेहमान नवाजी जुड़िया लोगों स्वाद सागे साफ सफाई नई तकनीक और पर्यावरण ने बचावन माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। श्री देवनानी कहो कि प्लास्टिक कम काम लेवन और भोजन री बर्बादी रोकन सारू सगला ने मिलर कोशिश करनी भैला। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो बच्चा सागर नजर आई है। माणा खबर नवीस बतायो कि बाघिन रा बच्चा री हिफाजत सारू कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग रे जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार,
0: सवाई माधोपुर। अरब खबर राष्ट्रमंडल खेलों। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो में चल रहा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत रा खिलाड़ी भाला फेंक, तीन दफा कूद, जूडो और मुक्केबाजी री होड़ा में तमगा जीतिया है। महिलाओं री मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया सोनारा, रजत चौपड़ा चांदीरो और यशवीर सिंह कांसारो तमगो जीतियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत न्यारा न्यारा नेता देश रो माथो ऊंचो करण वाला आंख खिलाड़िया री मेहनत और शानदार खेल री सराहना कीनी है। इन बीच भारत री मुक्केबाज और कोटारी बेटी अरुंधति चौधरी रो आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड री चेंटल रीड मुकाबलो फैला। सोनारा 8, चांदीरा 15 और कांसारा 7 तमगा सागे पदक तालिका में भारत फिलहाल छठी ठौड़ माथे है। काम धंधा सारू काम ली जावन वाली रसोई गैस री टंकी रो मोल करीब 200 रुपया कम करती उचियो है। तेल कंपनियां रा इन फैसलाओं रेस्तरां, होटल, ढाबा और खान पीन री चीजां रा कारोबारियां ने फायदो मिलेला। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रमजब गैस री टंकियां रो नुओ मोल आज लागू फेंक्यो है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी री मद माए लारला महीना 2,11,200 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेड़ी करी जी। लारला साल जुलाई महीना रा 1,83,065 करोड़ रुपया रे मुकाबले आ 15% बत्ती बढ़ोतरी है। माली साल 2026-27 सारू काल ताई 5,90,00,000 बत्ती आयकर रिटर्न दाखिल करी ची। इन सारू आयकर विभाग री ओरू सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए रिटर्न दाखिल करन वाला रो धन्यवाद करी चियो। प्रदेश रा कई हलका माए आज ही मेह बरसियो। बांसवाड़ा, पाली और भीलवाड़ा माए चोखो मेह व्यो जबकि भरतपुर और बाड़मेर माए छाटो छिड़को फियो। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत कीनी। पर्यावरण बचावन ने सगला नी भेड़ी जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावन माथे जोर दी।

0: शहर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेला माए भारत रा खिलाड़ियां रो चोखा खेल रो दर्शाव 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ मात है। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: कोई डर नहीं।
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा था भाई का घना घना राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी मारा घना घना राम राम।
8: बिल्कुल, आपने वो सुनवा वाला जता भी अपना हितालु श्रोता है जगह दूर दराज गांव ढणी रे मैंने बैठ रेडियो सुने हैं, और आज को तो आपनो विशेष कार्यक्रम है किसान वाणी, तो आप सगला हितालु ने घने मानसो था का भाई प्रभु दयाल वर्मा की तरफ से भी राम राम सा। देखो बिरखारो दौर चलने लाग रहे हैं, और अस्यारे मायने जहां आप रोजना कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से बातड़ी अपना किसान भाई तक पूगती हुए कि भाई अच्छा टाइम का माए तो एक तो आपने पानी है भी की अपन बचत करनी चाहिए।
7: बिल्कुल,
8: क्योंकि आपने जीवन को जल ने है जो जीवन को आधार बताए गए है, और महापुरुष भी कहे कि भाई तीन रतन है जगत में, दाना पानी और बोल, आके आगे और क्या देखा खूब टटोल। यानी कि दाना है, पानी है और बोल है इंसान रा, ए दुनिया का बड़ा जगह रतन है, कीमती वस्तुओं में गवाई शामिल किया गया है। तो भाई सोच समझ रहा, अपन शब्दों को इस्तेमाल भी सोच समझ करना चाहिए।
7: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
8: और अन है बिन भी अपन बचना चाहिए, क्योंकि विश्व अपनी उधर पूर्ति हुए, और पानी को भी अपन बचत करनी चाहिए, क्योंकि पानी बचल लो तो अपनो जीवन है जो बचल लो। पानी पर देखो अपनो पूरो जीवन को निर्माण या कैसे कहा जीवन की उत्पत्ति है जगह भी पानी से हुई, ये वास्ते अपन बिरखरो टेम है तो अपना जगह भूमिगत जल स्तर है बिन सुलेवा के वास्ते बरसात रो पानी अपन परंपरागत अपनी नाडी है बावड़ी है बाको अपन संरक्षण टूटड़ा टूटड़ा पड़े है तो बन अपन थोड़ा सा ठीक कर भगवान अपन पानी की बचत।
7: और प्रभु भाई आपने काश्तकार भाई ई बात ने बहुत अच्छी तरह समझे छे, भाई सूखा प्रदेश में भी रहे छे, राजस्थान छे, पानी की कद कमी हो जावे कद कोई अतो पतो को ना ई ताई ई महत्व ने तो भी अच्छी तरह ही समझे छे। और अब देखो आगे कार्यक्रम किसान वाणी ने आगे बढ़ावा ना अपन,
8: और आगे बढ़ाता था अपने किसान भाइयों तक जकी जानकारी है मेरे वास्ते डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी अपने स्टूडियो में है, तो क्यों ने आशा भाई थी बातचीत मसू करो, और किसान भाई ने जी आज को जो विषय है अपनों किसानों की आमदनी बढ़ावा के वास्ते फल और सब्जियों को प्रसंस्करण ई विषय पर जानकारी आप डॉक्टर साहब से लियो।
7: बिल्कुल बिल्कुल सर, किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा था भाई का घना घना राम राम सा। श्रोता आज अपने साथ स्टूडियो में महेश के शर्मा, आप डीन कृषि

0: महाविद्यालय कोटपुतली। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है शर्मा साहब। राम राम सर।
1: राम राम सर।
0: और आज आप यहाँ से बात करेला किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए फल सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब यह बताओ सर कि जहाँ की आज को आपनों विषय है कि किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा करती है अगर आप फल और सब्जियां को प्रसंस्करण करा, पर इन्हें समझ वाली यह बात है कि प्रसंस्करण जो हुए छे वो काई हुए छे।
1: राम राम किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, ये प्रसंस्करण मतलब छे आपा जो बड़का आपने कहावत कहा करेचा कि आम का आम और गुठली का दाम, तो ई के माने कहे छे आपा आजकल देखो किसान भाई कितनी मेहनत सु खेती करे और खेती के बाद में आपा जी मान लो 100 किलो अपना टमाटर पैदा करे तो लगभग 30 किलो टमाटर बेकार जाए, सड़ गल जाए। जब सीजन हो तो भी में बहुत प्रोडक्शन होया करे और वो प्रोडक्शन आपने भी के मायने करीब करीब मतलब 30-40% खराब हो जाए, तो इन बचावाट है यो जो वेस्टेज है। एक तो एनवायरमेंट भी खराब हो, किसान भाइयों ने इनकम भी कम मिले और दूसरा कंज्यूमर ने भी अच्छी क्वालिटी को नहीं मिले। तो फूड प्रोसेसिंग शू मतलब से किसान भाइयों की जो भी खेती से आपने फल एवं सब्जियां का जो प्रोडक्ट खाबा का मिले खाना का रूप में बदलबो या खाना का एक रूप में दूसरा रूप में बदल खाबो। तो फूड प्रोसेसिंग में कई बातें होया करे जी आप फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एड कर दिया भी की मतलब जो बाजार मूल्य से मैंने बढ़ा दिया। जी हाँ, बार आप आम की बात करा
0: जी,
1: तो आम जी सीजन में आपने मिले 50 रुपए किलो मिल जाए तो भी को पल्प निकाल और अगर आप सर्दियों के मायने जो आपने फरवरी मार्च अप्रैल महीना में बेचा तो वो आप 200 रुपए किलो तक भी पल्प बिके, तो इस हिसाब से आप भी प्रोसेसिंग करे और ज्यादा आमदनी कमा सका
0: जी। यानी कहवा को मतलब यही चे काश्तकार भाया कि सीजन का टाइम जो चीज सस्ती चे उन्हें आप ले, अगर ऑफ सीजन में जबकि वह पैदा कौन हो उस टाइम बाजार में अगर बेचोला तो आपने उस चीज को अच्छो दाम मिल जाओलो, इके लिए आपने वहां सामानों को फलों या सब्जी वहां की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि वहां की जो उम्र छे वह बढ़ जावे। वैसा बहुत ही बढ़िया तरीको छे किसानों के लिए कि प्रोसेसिंग कर हुए आपको जो सामान छे उन्हें उच्च दरों पर बेच सके छे और आपकी आमदनी ने बढ़ा सके छे। अब आपसे यह पूछबो सावना सा कि जहाँ प्रसंस्करण की आप बात कर रहे छे कि फल और सब्जियां का किसान भाई प्रसंस्करण कर कहीं आपकी आमदनी ने बढ़ा सके छे, तो प्रसंस्करण का तरीका जो है वे कौन कौन सा छे, सामान्य तरीका से किसान भाई की तरीका से फल और सब्जियां को प्रसंस्करण कर सके छे।
1: देखो किसान भाई जो आप सामान्य तरीका फूड प्रोसेसिंग की बात करा प्रसंस्करण की बात करा पर्टिकुलरली फलान सब्जियां की, तो भी मैं आप गर्म कर कुछ हल्का गर्म कर भी उसमें आप जो फल एवं सब्जियां की सतह पर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव पाया जाए जो फलान खराब करे भी उसमें बचा सका। डिब्बाबंदी जिन्हें आप कैनिंग कहवा, डिब्बाबंदी में आप कहें करा कि जो सब्जियां की डिब्बाबंदी करा तो वह आप ब्राइन सोल्यूशन में नमक का 2% घोल में करा और जो फला की डिब्बाबंदी करा कैनिंग करा बी के मायने आप जो शुगर सिरप चीनी को जो चाशनी हुए बी के मायने किया करा, जूस और जूस निकाल भी आप प्रोसेसिंग कर सका और जूस ना आजकल तो फलां को जूस निकाल जूस ने ऐसा आप फ्रीज में रख डीप फ्रीज कर सका, दूसरो जूस ना आप कंसंट्रेट कर सका देखो पानी ने यूपरेट कर गर्म कर वाष्प के बना उड़ा और भी ना आप गाढ़ो कर सका जिनमें पानी मिला बाद में पिला सका। इसके अलावा भी पाउडर फॉर्म में जूस ने पाउडर का रूप में बना सका है जिसमें भी को वॉल्यूम आयतन कम हो जाए बिना आप मार्केट में बेचना आसानी रहे। जी हाँ, आपने एक गिलास बनाओ तो आपने 5 ग्राम ही पाउडर बहुत छे
0: जी,
1: तो यहाँ पाउडर फॉर्म में भी जूस ना आप बना सका बिना पानी उडार। इसके अलावा फर्मेंटेशन आप देखो ला अचार बनाओ, कैरी को अचार बनावा है, गोंदा को अचार बनावा आप लसोड़ा को अचार बनावा, ये सब अचार फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाए और फर्मेंटेशन के बाद में बिना आप तेल से प्रज्वल करा। इसके अलावा जमना है फ्रीजिंग जी हाँ, पल्प आम को पल्प निकाल लिया बिना आप फ्रीज लो टेम्परेचर फ्रीज कर दिया तो जम जाए और फिर जब यही कस्टर्ड एप्पल सीताफल को आप पल्प में निकाल फ्रीजिंग टेम्परेचर में फ्रीज कर लिया तो वो बिल्कुल ठोस बन जाए और जी यही आप खाओ जब इन्हें तो बिने बाहर निकाल कमरा का टेम्परेचर पर रख दो तो वो मेल्ट हो जा लो और फिर आप बिने खा सका। इसके अलावा संशोधित वातावरण पैकेजिंग आजकल ये भी खूब चाल रही है कि फलाने सब्जियां ने जो एनवायरमेंट चाहे जी मॉडिफाइड एटमोस्फेयर पैकेजिंग को भी सिस्टम चालू
0: बी
1: के मायने जी हाँ ऑक्सीजन की आप कम कर दिया कंसंट्रेशन CO2 ज्यादा तो बी के मायने बी की जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया कम हो जाए ली और खराब होने में टाइम लाग लो। पास्टराइजेशन पास्टराइजेशन आप कहें करा कि टेम्परेचर दे स्टीम दे और भी को जो माइक्रोब्स पाया जाए भी की सतह पर फल एवं सब्जियां पर बान आप खत्म कर दिया जिसमें भी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसके अलावा भी कुछ और नई नई तकनीक हैं जाके द्वारा किसान भाई फल एवं सब्जियां ने प्रोसेस कर और

0: संरक्षित कर सके छे।
1: शर्मा साहब, आप किसानों के आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियों का प्रसंस्करण की बात कर रहे थे और आप बहुत ही विस्तार से बता भी रहे, प्रोसेसिंग को भी आप तरीकों बताया कि की तरह से प्रोसेसिंग करी जावे जाए। अब आपसे यह जानबो चाहे ना कि प्रसंस्करण का जो मोटा मोटा फायदा है, या आप यह सोच लेवा कि उद्देश्य ने ले प्रसंस्करण करो जावे और मुख्य रूप से इनका फायदा काश्तकार भाई ने की तरीका से मिले, चाहे किसान छोटो हो या फिर बड़ो।
0: देखो किसान भाइयों, फला सब्जियां का प्रसंस्करण सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप जो उत्पादन आप करें वो पूरे को पूरा उत्पादन आप सेफ रहे और आपने विश्व ज्यादा पीछा मिले आप बाजार में भेज दिया, पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात, जब बाजार में आपने भाव कम रहे हैं, जो टमाटर खूब पैदा होगा तो भाव कई बार देखा अपन तोड़वा को भाव कम मिले, तो भी टमाटर ने आप प्रोसेसिंग कर भी चाहे पल बना रख लिया है फ्रीजिंग कर जिन्हें आप फिर जब टमाटर 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो होगा तो बेच दिया, अही भी को सॉस बना सका आप टमाटर केचप बना सका, ये भी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जी, उत्पाद का आप वैल्यू मतलब की प्राइस वैल्यू बढ़ा दिया,
1: कीमत
0: बढ़ा दिया, इस तरह से आप माने संरक्षण कर सका। तीसरी बात जो आवे, आप उत्पादन जो भी हुए तो वो आपने अगर बिना आप सड़वा गलवा बचा लिया तो आप वातावरण भी को मतलब शुद्ध रह लो। और चौथी बात है जो आप मतलब अच्छी क्वालिटी संरक्षण कर कंज्यूमर ने बेचाना तो कंज्यूमर का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे है और कंज्यूमर की भी की एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इन्हें खरीदवा की इच्छा जो रहे भी ज्यादा रह ली। और जो सबसे बड़ी किसान मायन फायदा हो लो वो हो लो एक मायने आपने किसान मायने इनकम जो है, क्योंकि आज को टाइम छे आर्थिक युग छे बिना पैसा काम चालू हम तो किसान मायने आमदनी भी ज्यादा होली करीब करीब डबल हो जाएगी, तो ऐसा सब चीजा देख रही आप प्रोसेसिंग को काम करा और किसान भाइयों की आमदनी बढ़ावा के बारे में सोचा।
1: शर्मा साहब, और आप बात कर रहे थे शुरुआत में तो आप एक शब्द को उपयोग कर रहे थे कि कैनिंग, तो कैनिंग की जब बात करा चाह या डिब्बा बंदी जी ने आप समझ सका चाह सरल शब्द में उनके बारे में यह बताओ सर कि जो काश्तकार भाया छे चाहे वो छोटो किसान हुए बड़ो किसान हुए वो की तरीके से इन्हें कर सके चे काई की विधि चे कितो पीसो लागे चे कितो समय लागे चे विस्तार से समझाओ सर।
0: देखो किसान भाइयों, जो कैनिंग छे डिब्बा बंदी छे, अब जी आप बात करा सब्जियां में कैनिंग की तो सब्जियां में कैनिंग जनरली मटर में हुआ करे, मटर का पहले आप बीघा छिलका ने छिला ला और फिर दाना निकालना माने और बाद दाना निकाल अपना भी ने अच्छी तरह से धो लेना ग्रेडिंग कर लेना साफ सफाई कर लेना और फिर उनके बाद में माने थोड़ा हीटिंग थोड़ा गुनगुना पानी में और उनके बाद में आप माने डिब्बा बंदी करा ब्राइन सॉल्यूशन में, ब्राइन सॉल्यूशन हुआ नमक को घोल 2% नमक का घोल के माने माने आप डिब्बा बंदी कर और फिर अच्छी तरह पैकिंग कर दिया और पैकिंग कर और फिर माने आप अच्छी तरह जीवाणु रहित कर और अच्छी तरह मतलब कोल्ड स्टोरेज में रख दिया और जब जरूरत है मार्केट में या मटर को सीजन चले वो सर्दियों के बाद में तो गर्मियों के मायने आप मैंने मार्केट में निकाला और अच्छी रेट पर किसान भाई माने बेच सके। यही बात करा फला की कैनिंग की, अगर जी हाँ आम की कैनिंग करा आप तो आम में क्या करा कि आम का छिलका ने पहले धोधार अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी का आम आप सिलेक्ट करा और फिर आम जो सिलेक्ट कर लिया मैंने छील और फिर बाकी जो पल्प छे बिने टुकड़ा में काट और अच्छी तरह मतलब उन्हें थोड़ा सो हल्को सो भाप दे और फिर आप उन्हें चीनी का घोल के अंदर और डिब्बा के अंदर डाल और अच्छी तरह बंद कर कैनिंग और पास्चराइज कर और फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा और जब आम को खबा को सीजन फ्रेश आम खबा को सीजन चले जाए सर्दिया में उन टाइम आप खावा के काम में ले सका।
1: यानी खबा को मतलब यही चे कास्ट कर भाया कि साल भर सब्जियां और फड़ा की उपलब्धता के लिए और ऑफ सीजन में जी टाइम उत्पादन कौन हुए उ टाइम अच्छी आमदनी लेवा के लिए ये दोनों तरीका बहुत बढ़िया से कि आप प्रसंस्करण कर और कैनिंग कर भी फल और सब्जियां ने रख सको और आपकी आमदनी बढ़ा सको। अबार आप निर्जलीकरण की भी बात करे चाह तो आपसे विस्तार से जानबो चावेला काश्तकार भाई ने बताओ सा कि निर्जलीकरण से काई मतलब छे और इका काई फायदा छे और काई तरीका से करी जाओ।
0: जी हाँ, बथु हो चो पालर हो चो आज हमने धूप में सुखा दिया करे था और फिर धूप में सुकार जब ये कुछ सीजन कौन जो पालक को बथुआ को तो बिकी सब्जी बनाया करे था, पर आजकल वो धूप में सुखावा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है बीके मायन कहे थे कि भी को कलर फेड हो जाए, अगर डायरेक्ट सनलाइट में सूर्य की धूप में ये हरी पत्तीदार सब्जियां सुखावाला तो आप देखा वाला किसान भाई की सब्जियां को जो रंग है वो हरे हो चे और अगर मैंने डायरेक्ट आप सूर्य की धूप में सुखा देना तो वो रंग

0: ब्याह छे और हल्को पड़ जाए जो देखवा में अच्छो बन लागे। आजकल जो छे सोलर ड्रायर आ रहा जो सूर्य की उष्मा में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आजकल तो लाइट भी जला रहे अपना सोलर सूट, तो सोलर ड्रायर आवे बाग माय ना पाया सुखा सका हरी पत्तीदार सब्जियां ने और बानो सुखा, और फिर जब बाको ऑफ सीजन है या महंगी छे उन टाइम बाने आप उपयोग में ले सका। जी करेलो छे, करेलो अभी आपने खूब पैदा हो रही हो, अब ई टाइम ई करेला ने आप थोड़ा अच्छी तरह साफ सुथरो कर छील और नमक का घोल में थोड़ा धो और फिर ये ना आप अगर सोलर ड्रायर में सुखा लिया तो बिने ऑफ सीजन में आवा बेहतर अच्छा मुनाफो कमा सकते हैं। यही आपने हरी पत्तीदार सब्जियां में चाहे वो भथु हो चाहे चौलाई हो आपने चाहे पालक हो आ सबने भी आप सोलर ड्रायर में सुखा और ऑफ सीजन में यहां जब भी बाकी रेट बाजार में ताजा पत्तीदार सब्जियां रेट ज्यादा हो तो आप माने बेच अच्छो मुनाफो कमा सका। केवल सीधो सीधो एक ही सिस्टम से कि जो भी खावा की चीज है भी में जो पानी रहे या पत्तीदार सब्जियां या जो भी सब्जियां भाव में 80 सौ ले 90 सौ 95% तक पानी रहे, पत्तीदार सब्जियां में करा तो 90 सौ 95% तक पानी रहे तो भी पानी ने उड़ावो बस, और जो भी मान ठोस पदार्थ है वो ही आपने बच्चे लो पानी बिल्कुल उड़ा जाला जिसमें की वो संरक्षित रह सके लंबा टाइम,
1: यानी मॉइस्चर और नमी जो भी उन्हें खत्म करनी,
0: उन्हें खत्म करनी। इसके अलावा जो भी जहां फल का बात करा, फल के जहां छिलको उतरो, अब जहां नींबू में बात करा नींबू को छिलको उतरो तो वो छिलका का पीसा है जी हाँ, किसान भाई के दर मैं आम का आम गुठली का दाम तो मैं यही बात करूंगा जी आम को पल्प भी आपने निकाल लिया
1: जी।
0: आम की गुठली से स्टार्च निकाल लिया और वो स्टार्च जो वो आपने बहुत इंडस्ट्रीज में काम आया आजकल
1: बिल्कुल
0: है, तो यही नींबू का मायने नींबू की जो इवन छिलकोच है बीसों भी बीमें तेल निकले बीमें सुगंध निकले बीमें रंग भी निकले नेचुरल, तो ऐसे सब चीजा सो और मुनाफो है। जूस को तो पीसो मिल ही मिल गो और उनके अलावा जो भी का बाय प्रोडक्ट था जो पहले किसान भाई यही फेंक देता तो बीसों भी आपने आमदनी मिल रही है आजकल, तो न तो आप लोग एनवायरमेंट खराब है बीसू वातावरण खराब हो पॉल्यूशन कौन है और पैसा भी मिला है डबल मुनाफा हो किसानों ने, तो ये सब चीजें कर रहा था आजकल मतलब ज्यादा ज्यादा आमदनी कमा सका। जी हाँ नींबू का बीज का मौसमी का बीज भी के माने तेल पाया जाए थे तो भी को भी तेल निकाल और आजकल मार्केट में बेचो जाए और वो नेचुरल तेल तो बहुत ही महंगा हो जाकर जो सुगंध हो जाए बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि आजकल सिंथेटिक ज्यादातर सुगंध रही है मार्केट में आ रही है, नेचुरल तो बहुत महंगी बिके, तो इस हिसाब से अगर किसान भाई काम कर रहा तो बहुत ज्यादा आमदनी वो कमा सकते।
1: यानी कहबा को मतलब यही है कि थोड़ी सी आपने तकनीक जाननी चाहिए, थोड़ी सी आपने जानकारी रखनी चाहिए, पर हर एक चीज की वैल्यू चाहिए, हर एक चीज की कीमत चाहिए, कोई भी चीज बेकार को ना, चाहे बीज हो छिलको हो अंदर को पल्प हो या कोई भी चीज हो। वास्तव बहुत ही बढ़िया तरीका से आप जानकारी दे रहे थे श्रोताओं। महेश के शर्मा डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली अपनी साथ है और आज आपने बता रहे थे किसानों की आमदनी बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब एक और जो तकनीक छे उसको नाम काफी सुनवा में आवे छे स्पंदित विद्युत प्रौद्योगिकी, तो यो काई छे काई तरीको छे इस तकनीक का बारे में भी माका जो काश्तकार भाई छे वाने विस्तार से बताओ ताकि वे जाने इन्हें काम में लेवे और आपकी जी की आमदनी छे उन्हें बढ़ा पावे।
0: स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी के बारे में किसान भाई एक नई तकनीक छे पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करे टेक्नोलॉजी एक है जिसमें हल्की फूड प्रिपरेशन तकनीक है और लिक्विड प्रोडक्ट जी जूस हो चाहे है दूध हो चाहे या जो फला की प्यूरी जो पल्प हो चाहे बीमें नुकसानदायक बैक्टीरिया ने खत्म करवा एक छोटी सी बिजली की पल्स मतलब बिजली को भी करण दिया जाए पल्स दिया जाए भी को इस्तेमाल हो चाहे और उनकी सेल्फ लाइफ ने बढ़ा देते क्योंकि वो जो खराब करने वाला जो बैक्टीरिया या फंगस भी है वह खत्म हो जाए इस साथ ही उनमें ताजापन में कम से कम असर डाले थे और जो या स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है को इस्तेमाल और टेस्ट अलग अलग मकसद से किया जाए जहां जूस में प्रिजर्व करवा हटे या फलां को पानी निकालवा की बेहतर बनावा हटे सुखावा पहली ट्रीटमेंट के तौर पर भी इन्हें यूज किया जाए या बहुत अच्छी तकनीक से नई तकनीक।
1: शर्मा साहब आप बात कर रहे हैं बार फल और सब्जियां का बारे में, जो काश्तकार भाई फलों का बगीचा लगावे है वहां से आमदनी पावे है वहां के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अमरूद का प्रसंस्कृत उत्पाद है वे कशा कशा है और की तरीका से वहां से और अच्छी वैल्यू यानी कीमत ली जा सके।
0: देव किसान भाइयों अमरूद में जी पहले तो आप खावा चाहो ताजा फल नहीं खाया जा है सीधो अमरूद में खाया जा
1: बिल्कुल,
0: पर आजकल अमरूद बहुत पैदा हो रहे थे और देश दुनिया के दूसरी जगह भी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो अमरूद में ताजा तो खा ही सके टेबल पर्पज के रूप में तो खूब पैदा हो रही थे तो आपने बिल्कुल प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए
1: जी।
0: तो अमरूद का गुदा ना आप फ्रीजिंग लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर रख सका और जब ऑफ सीजन हो तो बिना आपा जो रूम टेम्परेचर भी निकाल रहे आप रख दिया तो वो खावा लायक बन जाए। दूसरा आजकल आप देख रहे हो ना जूस भी पी रहे हो

0: अमरूद को बहुत अच्छा लगा टेस्ट में, शादी विवाह में लोग आजकल दे जाते हैं, तो अमरूद को आप मशीन से जूस निकाल और भी कंडेंस कर लिया थोड़ा पानी उड़ा दिया और कंडेंस कर और फिर भी लो टेम्परेचर पर कैंड डिब्बा में बंद कर और रख कर लो टेम्परेचर पर रखा जिससे वो खराब को ना हो और जब जरूरत हो तो बिना आप मार्केट में बेच और अच्छा पैसा कमा सका। इसके अलावा आप आजकल देखो कि भी को लेदर गुआवा लेदर बन रहा है, गुआवा लेदर का हो जाए कि भी के मायने गुआवा को जो पल्प है बिना थोड़ा मॉइस्चर में सुखा और प्रिजर्व कर लिया करे और फिर जब भी जरूरत हो उन्हें आप अमरूद का पल्प या मतलब ठोस भी को आप खा सका या बर्फी हो जाए बिना खा सका। तो ये कई अमरूद का प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आ रहा है आप माने बना सका अमरूद।
1: अब जो नींबू और नींबू वर्गीय फलों वे वन की तरह से प्रसंस्कृत करे और कई कई उत्पाद नया बन प्रसंस्करण के बाद बाजार में आ रहे थे जाकि वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है और काश्तकार भाई ने जागरूकता रखनी चाहिए, नई तकनीक ने अपनानी चाहिए और यह सब्जियां ने और फला ने प्रसंस्कृत करनी चाहिए।
0: नींबू, नींबू तो देखो किसान भाई आजकल आप देखो 200 रुपए किलो तक भी बिके, आजकल सस्ते हो मना गर्मी के टाइम तो 200 रुपए किलो तक भी।
1: बिल्कुल,
0: तो नींबू तो प्रसंस्कृत करवा को सबसे इम्पोर्टेंट फल है। अभी मैं नींबू का मायने कहें करा नींबू का रस ने आप प्रसंस्कृत कर सका और ई को ड्रिंक्स बना सका, जूस बना सका नींबू का, लेमन जेस्ट नींबू को बाहरी छिलका में एसेंशियल ऑयल हो तो बीसू आप तेज खुशबूदार स्वाद दे वालो तेल निकाल सका, दूसरों जूस को पाउडर बना सका नींबू का जूस को भी अगेन पूरा पानी ने आप मशीना से यूपरेट कर डाला सुखा डाला और फिर भी ने आप पाउडर का फॉर्म में बना लेला और जब भी अपन जरूरत हो तो पाउडर में पानी मिला और आप पी सका है। जो आपने तेल दे रहे थे आपने सुगंध दे रहे थे आपने कलर दे रहे थे नेचुरल, तो ये किसान भाई आटे नींबू तो एक वरदान से प्रकृति को और ये बहुत ही अच्छी आमदनी को साधन से किसान भाई की खेती कर और साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी एक ध्यान दे वाली बात है कि आजकल जो सरकार आज है आपने चाहे वो केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार वो ये सब का अगर एफपीओ बना लेना आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेना या खुद फार्मर भी इंडिविजुअल फार्मर भी कर सके तो माने ये जो प्रसंस्करण उद्योग लगा हुआ है फल एवं सब्जियां का सरकार एक सहायता दे रही, सरकारी सहायता मिल रही है तो सरकार भी अच्छा है कि हमारा किसान भाइयों की आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और माने ज्यादा से ज्यादा हेल्प करा और बाकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मतलब सेफ रहे जो कितनी मेहनत से दिन रात मेहनत से पैदा करें और कंज्यूमर ने भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले खबर।
1: शर्मा साहब बहुत ही विस्तार से हर एक चीज ना आप काश्तकार भाई ने बता रहे हो। अब जब अपनी बातचीत समाप्ति की ओर से तो एक और सवाल मन में आ रहे वो आपसे जानबो चाहे ना कि फल और सब्जियां का प्रसंस्करण के बारे में आप इतनी देर से बात करी रह जा काफी सारा फायदा तरीका आप बताया भी, अब कहीं कोई नुकसान भी चाहिए या कहीं सावचेती बरतनी चाहिए या भी बताओ।
0: देव किसान भाई हर चीज आप कहीं भी काम करा लाभ भी हो चाहे तो भी का नुकसान भी हो जाए।
1: बिल्कुल
0: जी आप खाणो ही खाणो अगर आप जितनी भूख से उतना खाना ला तो वो फायदो है।
1: बिल्कुल
0: और ज्यादा खा लेना जी अभी ब्याह शादी में गया अगर मिठाई विठाई थोड़ी ज्यादा खा लेना तो वो नुकसान भी कर जाए। तो यही आपने फल एवं सब्जियों को प्रसंस्करण भी धोनी चाहिए में भी लाभ तो बहुत ज्यादा चाहिए पर कुछ हानिया भी है। लाभ तो आप बात कर ही चुके किसान ने इनकम अच्छी मिल ली है, पॉल्यूशन एटमोसफेयर को जितना उत्पादन है वो पूरे कंज्यूमर ने मिल लू अच्छी क्वालिटी मिल ली कंज्यूमर ने ये सब खावा ने सब तो फायदा है आमदनी भी किसान भाइया ने खूब मिल ली पर कुछ नुकसान भी है। जी आप बात करें कि कैनिंग सब्जियां कैनिंग आप करा ब्राइन सोल्यूशन में नमक का घोल में 2% का में तो बी का मान कहें कि सोडियम नमक मतलब ज्यादा रहते सोडियम ज्यादा रहते तो वो आपने नमक थोड़ा खावा ज्यादा चल जाए और वो आपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हुआ मतलब नुकसान इतना ज्यादा कौन है जितने नुकसान आपने किसान भाई ने भी की मेहनत को रिटर्न न मिले कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी न मिले और वातावरण ने भी दूषित करे अगर फल सब्जी छट जाए तो नुकसान तो बहुत ही नेग्लिजिबल है बिना आप थोड़ी सावधानी रखकर जी हाँ अपना कैनिंग से टुकड़ा फल का जब निकाल खाया तो बिना आप थोड़ा धो लिया साफ कर लिया जिसमें कि वह जो चीनी की चास हट जाए यही सब्जियां ने जो नमक का सिरप में आप डिब्बाबंदी करा तो जब भी यूज लिया तो बिना थोड़ा अच्छी तरह धो लिया जिसमें कि जो ज्यादा नमक है वो निकल जाए तो थोड़ी बहुत सावधान रखे आप जो फल एवं सब्जियां प्रसंस्करण से बड़ा नुकसान हो बच सका आराम से।
1: काश्तकार भाई किसानों की आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण इसके बारे में बहुत ही बढ़िया विस्तार से बताया महेश के शर्मा आबदीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली आज अपना स्टूडियो में आया और आपने जानकारी दिया इतना ही आपको खूब खूब धन्यवाद सर।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है
3: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: तो चला बोलना।
3: पक्षियों से तो हम खेत को

0: बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो पहली वाली बात कहा,
1: परंतु सब ये डाले
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: अरे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: जी
4: हाँ सर बहन, कार्यक्रम के मायने अब अपन थोड़ा सा संगीत की तरफ चला, और राजस्थान की मिट्टी सी की एक लोक रचना है जो कि भाई लोगों तक पहुंचती करवा।
3: बिल्कुल सर।

0: प्रभु भाई थोड़ा सो गीत आज आप कम सुना पाया चा उनके लिए माफी चाहवा चा।
1: बिल्कुल माफी चाहवा, लेकिन देखो एक मायने मौसम की बात हो रही है, बिजली चमकवा की बात हो रही है, तो मौसम की क्यों ना थोड़ी सी बात अड़ी कर जाए। तो देखो आज आप जयपुर का अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री ले 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रेबा को है, और न्यूनतम की अगर आप बात करें तो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आसमान का मन का बादल है वे छायाडा रेसी खट्टे खट्टे हल्की सी बारिश है और बिजली चमकवा की पूरी पूरी संभावना है।
0: और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि आज को जी को कार्यक्रम से किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे हैं, तो श्रोतावा दिराओ आगे आशा ने
1: और प्रभु दयाल ने
0: चालार करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:30 हो रही हैं और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का कार्यक्रम।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोता मैंने आशा था भाई का घना घना राम राम और प्रभु भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
1: बिल्कुल आशा बहन थाने और सगला अपना जगह किसान भाई बहन दूर दराज कार्यक्रम बैठे सुने खेत कमाई ने काम करता बस सगला भाई ने प्रभु दयाल वर्मा की तरफ सुबी गणी मानसू राम राम सा।
0: अब देखो सा राम श्यामा की साथ साथ ही थोड़ी सी बात यह भी भाई बरसात को मौसम चाल रो मैं बरस रो कई जगह तो अतरी दिक्कत हो रही है परेशानी पर अब कई करा इंदर राजा की मेहरबानी कोई जगह कम कोई जगह ज्यादा पर आपनो काम यह की सावचेती हर जगह आपने ज्यादा ज्यादा ही रखनी चाहिए कई बात आप अपना खेती किसानी की कर लेवा पशु पालन की कर लेवा या कर लेवा अपना स्वयं का स्वास्थ्य की।
1: बिल्कुल स्वास्थ्य की थे बात करिए तो देखो क्यों ज्यादा के भाई पहलो सुख निरोगी काया
0: बिल्कुल
1: आपनी काया निरोगी है तो वो सब बड़ो सुख है
0: और दूजो और तीजो धन और माया
1: बिल्कुल वह तो देखो पक्ष है आपनो स्वास्थ्य सही रहे तो देखो अपन की माया है भी वो आप आनंद ले पाऊला जिंदगानी ने अगर ढंग सो अपन जीवनो है तो आप स्वास्थ्य चोखो रहना चाहिए
0: और स्वास्थ्य चोखो रहना चाहिए इसलिए थोड़ी थोड़ी सी सावचेती जरूरी है। एक तो यही देखो प्रभु भाई की अबार बरसात का मौसम में मच्छर माखी ज्यादा हो रही है वन असू बीमारियां फैले छे चाहे आप अपनी बात करा अपना ढांडा सांसना की तो ध्यान आप यू भी रखा कि अपना आसपास घर का आसपास जो भी कोई नाली वगैरह छे उनमें पानी जमा न हो कोई आप देखो कबाड़ रख देवा चाहे डागला के ऊपर वो कौन जमा हो उनमें पानी वाणी तो थोड़ी सी सावचेती रखा लागे की पानी छे तो निकास की अच्छी व्यवस्था कर लेवा यही चीज पशुशाला में भी लागू हो गए भाई पशुओं के नीचे बिछावन से वह सूखी रहे क्योंकि ये टाइम थोड़ी सी भी अगर पशुओं के लाग जावे घाव हो जावे जाए तो संक्रमण फैल जावे जाए खुरपका मुंह पका भी ज्यादा हो जाए उनको टीकाकरण करा देवे यानी कहवा को मतलब यही है भाई बातना तो छोटी छोटी है पर घनी मोटी है अगर ध्यान में रखा तो
1: बिल्कुल
0: और ध्यान में रखवा की एक बात और लाग रही है मैंने
1: इशारों में समझ रही हूँ आप कार्यक्रम में मनोरंजन की तरफ लेर चलना एक मीठी सी लोक रचना सुना दिया
0: बिल्कुल तो आओ सर सगला ही मिलर सुना

ಇಂದ ಯಾರ

0: सामान बरस बाद वो बरसो आसो जा में रुक गो अरे सामान बरस बाद वो बरसो आसो जा में रुक गो
1: अरे मुंगे मोट उड़दारे माले मोरनी नाचे अरे मुंगे मोट उड़दारे माले मोरनी नाचे
0: इंदे इंदे इंदे

0: चलत झेल रहे हो नानो, अरे नानी पानत कर रही रे चलत झेल रहे हो नानो।
1: इंदे यारा का अलग जामोती सुंदर भागे।

0: जवान और जय किसान और जय जय हिंदुस्तान, जय जवान और जय किसान और जय जय हिंदुस्तान। अरे लड़बाने आवे तारो बने लाजे, अरे लड़बाने आवे तारो बने लाजे, के इंदे के इंदे इंदे यारा का अलगो जामोटी सुंगरी भाजे, इंदे यारा का अलगो जामोटी सुंगरी भाजे।
1: आशा बहन देखो बहुत ही मीठी सी लोक रचना है जी, रेडियो सेट के माध्यम से भाई लोगों तक पहुंचती हुई।
2: बिल्कुल सा, और अब जानकारी की भी थोड़ी सी बात हो जावे।
1: बिल्कुल जानकारी की जी आप बात कर रहे हैं, आप लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में भाई गए पशुओं को जो टीकाकरण है वो बरसात का दिनांक मायने होना चाहिए। तो बरसात के ऋतु के मायने पशुओं को टीकाकरण करवाना क्यों जरूरी है, इस विषय पर अपन जानकारी डॉक्टर श्री राम करियर जी दे रहे हैं और आंसू बात लिए अपने मधुबेन कर रहे हैं। तो क्यों ने पहली बातचीत सुना जाए पश्चात बता चीता और कृष्ण।
2: बिल्कुल सा
3: श्रोतावा कार्यक्रम में आपने सागे है डॉक्टर श्री राम करीर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर PGIVER जयपुर में आप पदस्थापित हो। और जी महत्वपूर्ण विषय माथे आज मैं आपसे जानकारी लेशा, वो विषय है वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण। तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपको खूब खूब स्वागत। राम राम सा।
4: राम राम सा
3: जी। की डॉक्टर साहब आपनो विषय है कि वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण। तो सर सबसे पहले तो आप आई बात बताओ कि वर्षा ऋतु में टीकाकरण क्यों जरूरी है।
4: हाँ जी देखिए, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और राम राम। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हर पशु और किसान भाइयों के लिए अत्यंत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे पशु हमारे सहायक और हमारी आजीविका का आधार है। इनका जो स्वास्थ्य है वो न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो अपन अभी देखते हैं कि पशुओं में वर्षा ऋतु में टीकाकरण जरूरी क्यों है। तो देखिए, इसके लिए जब वर्षा ऋतु आती है तो वो अपने साथ कई प्रकार की चुनौतियां लेकर आती है। इस मौसम में नमी अधिक रहती है एक तो, दूसरा चारों ओर कीचड़ और गंदगी फैल जाती है, कई प्रकार के कीटाणु बैक्टीरिया वायरस सक्रिय हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं में रोगों का खतरा बढ़ जाता है और हम सभी जानते हैं जो रोगों से बचाव है वो उपचार से बहुत ही बेहतर होता है। तो टीकाकरण भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं, वो पशुओं में क्या है कि रोग होने से बचाव करते हैं। एक बात और कि कुछ जो रोग है जो पशु रोग है वो जूनोटिक टाइप के होते हैं, यानी कि वो पशुओं से इंसानों में भी फैल सकते हैं और वर्षा ऋतु के दौरान ये संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रूसोलोसिस हो गया, रेबीज हो गया। तो टीकाकरण क्या है कि ऐसे जो रोग है उनको नियंत्रित करके जन स्वास्थ्य को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वर्षा

0: ऋतु में टीकाकरण न केवल पशुओं को बीमारियों से बचाता है बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाकर उनकी आजीविका भी सुरक्षित करता है।
1: वाह सर, डॉक्टर साहब बहुत ही सहज और सरल शब्दों में आप बताया कि टीकाकरण वर्षा ऋतु को मायने क्यों जरूरी है। देखो भैया तो सर, टीकाकरण जो है हर अवस्था में और हर समय जरूरी हुआ करे है। जी आप अपना टाबरा को बालपना से ही टीका को ध्यान रखा हाँ, ताकि आबाला समय में आपनो टाबर बीमारियों से बचरे हुए। वे ही अपना पशु है, वे भी अपना टाबरा की जियान है, अपना परिवार का सदस्य है, तो आरंभ से ही बाका टीका को आपा ध्यान रखा हाँ। पर वर्षा काल का मायने या वर्षा ऋतु में ही क्यों खासकर जरूरी है, तो यो आप बताए कि भाई वर्षा ऋतु का मायने संक्रमण और बहुत सारी बीमारियों को खतरों ज्यादा बढ़ जावे है। तो या तो आप बहुत चौकी बात बताया। अब वे कौन कौन सा टीका है जो आपने अपना पशुओं के लगवाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो गाय भैंस है उनमें सामान्यतः 6 बीमारियों के बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं।
1: जी
0: अब देखो, पहला जो टीका है वो गलगोटू रोग के लिए लगाया जाता है और उसका जो टीका होता है उसका नाम HS वैक्सीन के नाम से आता है। ये साल में एक बार लगता है और ये मानसून शुरू होने के पहले लगता है, जैसे मई जून के महीने में लगता है। दूसरा टीका जो है वो लंगड़ी बुखार का लगता है, इसके टीके का नाम VQ वैक्सीन होता है और ये भी साल में एक बार ही लगता है और मानसून से जस्ट पहले लगता है। तीसरी बीमारी जो है वो है खुरपका या मुंह पका, इसका जो टीका आता है उसका नाम FMD वैक्सीन होता है और ये साल में 2 बार लगता है, एक बार तो मानसून से जस्ट पहले लगेगा और एक बार दिसंबर या जनवरी माह के बीच में लगेगा। चौथा रोग है गिल्टी रोग, इसको एंथ्रेक्स भी बोलते हैं और इसका जो टीका आता है उस टीके का नाम होता है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये साल में एक बार लगता है और मानसून से पहले लगता है। पांचवी बीमारी है ब्रुसेलोसिस, ये जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है वो कॉमन होती है या सामान्य होती है जानवरों में, तो इसका लिए जो टीका होता है वो जीवन में केवल एक बार लगवाना होता है, उसके बाद उसको दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं होती और ये किसी भी समय अपन लगवा सकते हैं।
1: जी
0: और छठवां जो रोग है वो अभी जो कॉमन हुआ था पहले, लंपी स्किन रोग, ये भी रोग, ये जो टीका है इसका साल में एक बार ही लगता है और या तो ये मानसून से जस्ट पहले लगता है या फिर जब रोग का प्रकोप ज्यादा हो तब लगता है। ऐसे ही भेड़ बकरी के लिए मुख्यतः 4 बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं। पहला भी रोग है फड़किया रोग, जिसको ईटी भी बोलते हैं, ये साल में 2 बार लगता है ये टीका, एक तो जून के महीने में लगेगा और एक दिसंबर के महीने में लगता है। दूसरी बीमारी है बकरी प्लेग, जिसको PPR भी बोलते हैं, ये क्या है कि जीवन में एक बार लगता है इसका टीका और किसी भी समय इसको अपन लगवा सकते हैं। तीसरी बीमारी है खुरपका और मुंह पका रोग, ये साल में एक बार लगता है इसका टीका और ये अभी मानसून से कुछ टाइम पहले या कुछ 15 दिन पहले लगता है, मई जून के महीने में। जो गलगोटू बीमारी है चौथी बीमारी, वो साल में एक बार ही लगती है और मानसून के एक माह के बाद में लगती है, यानी मानसून स्टार्ट होने के बाद में इसका टीका लगता है।
1: जी डॉक्टर साहब, यह तो आप बता दिया कि टीका कौन कौन सा आपने लगवाना चाहिए। अब टीकाकरण के दौरान वे कौन कौन सी सावधानी है जो अपना पशुपालक भाई बहन जो आपने सुन रहे है, कौन कौन सी सावचेती रखे ताकि टीकाकरण के दौरान कोई समस्या नहीं आवे।
0: जी देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि टीकाकरण से कम एक सप्ताह पहले पशुओं को जो पेट के कीड़े मारने की दवा है जिसको डिवर्मिंग बोलते हैं वो दे देनी चाहिए। टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक पशु को तनाव मुक्त स्थान पर रखना चाहिए और पशु जो है वो किसी भी रोगी पशु के संपर्क में आने से रोका जाना चाहिए। तीसरा है कि जो यदि कोई पशु जैसे ज्यादा बीमार है, ज्यादा वीक दुर्बल हो गया है या फिर वृद्धावस्था में है तो उसको टीकाकरण अपने को नहीं करवाना चाहिए। और एक और बात है कि टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक पशु को उपचार हेतु ये जो एंटीबायोटिक औषधियां होती है जैसे सल्फा औषधियां हो गए या कृमिनाशक हो गए या फिर जो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है, ऐसी औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। और एक बात और है कि दूध का जो सेवन है वो रोकने की जरूरत नहीं होती टीकाकरण में, बस ये है कि दूध को है अच्छे से उबाल के बाद में उसका उपयोग किया जाए। और एक है कि डॉक्टर या प्रशिक्षित व्यक्ति से ही टीका हमेशा लगवाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, यह तो आप बताए कि वर्षा ऋतु को मायने आपने टीकाकरण करवाना ही चाहिए क्योंकि संक्रमण रोग को खतरो वर्षा ऋतु को मायने ज्यादा रेवे है। कौन कौन सा लगवाना चाहिए और के सावचेती रखनी चाहिए यह भी आप बता दिया, पर ऐसी कौन सी खास बात है कि जो आपने या आपना जो पशुपालक भाई बहन है माना ओ बेरो पड़ जाए कि टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, कितना जरूरी है, वैसे कौन सा

0: મોટા ફાયદા હે ઓર અગર પશુ અને ફાયદો હે પશુ નિરોગી રેસી તો આપણો પશુપાલક ભાઈ બહેન ભી લાભાન્વિત રેસી માને ભી કોઈ સમસ્યા કો સામનો કોન કરનો પડસી તો ભે કુન સા બડા ફાયદા હે ટીકાકરણ સે આ બતાઓ સા
1: जी बिल्कुल। देखिए जो पशुओं के टीकाकरण करवाने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको किसान भाइयों या पशुपालक भाइयों को पता होना चाहिए, ध्यान में उनको रहना चाहिए। जैसे कि पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती है, उनसे टीकाकरण सुरक्षा प्रदान करवाता है। यदि टीकाकरण हुआ है तो बीमारियों के होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर। दूसरा क्या है कि जो टीकाकरण है वो पशुओं की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, और ये जो पशुओं में मृत्यु दर होती है इसको भी बहुत एक हद तक कम कर देता है। और एक कि ये रोगों को फैलने से रोकता है, यदि टीकाकरण हुआ हुआ है तो वहां यदि कोई बीमारी आ रही है तो वो फैलेगी नहीं वहां पे, क्योंकि वो पहले से ही उनके टीके लगे हुए हैं, तो उस बीमारी का वो सामना कर पाएंगे, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसको सामना करके उसको परास्त कर देगा। एक जो दूध उत्पादन है और जो कार्य क्षमता है वो यदि टीकाकरण करवाया हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वो मेंटेन रहता है, वो बराबर बना हुआ रहता है, कम नहीं होता है। और जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कई रोगों का जो नियंत्रण करते हैं उनमें बहुत से अच्छी मदद मिलती है टीकाकरण के माध्यम से। जैसे और कई जो सरकारी योजनाएं हैं, अपने राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं या फिर जो बीमा है उनके लाभ लेने में बहुत मदद मिलता है, क्योंकि जो कुछ सरकारी योजनाएं हैं या जो बीमा है वो ये बोलते हैं कि आपके पशु का टीकाकरण होना अनिवार्य है, तो टीकाकरण जरूर करवा लेना चाहिए। तो अपन यूं कह सकते हैं कि टीकाकरण एक छोटा खर्च है लेकिन इसका बड़ा बहुत बड़ा लाभ है।
0: जी डॉक्टर साहब, टीकाकरण के अलावा और कौन सी बातें हैं जो कि बिरखा ऋतु का मायने आपने ध्यान में रखनी चाहिए?
1: जी बिल्कुल। देखिए वर्षा ऋतु में केवल टीकाकरण ही नहीं बल्कि बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाई या पशुपालक भाई को। इसमें जैसे अपन पहले बात करें, जैसे कि उसका जो आश्रय व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। आश्रय व्यवस्था अच्छी होने से क्या तात्पर्य है कि जो छत है वहां से पानी नहीं टपकना चाहिए। ये क्या होगा कि यदि छत से पानी टपकता रहेगा तो वो जानवर के ऊपर गिरेगा, तो जानवर उससे क्या होगा कि तनाव में चला जाएगा, इससे सारा उसका सिस्टम है या जो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमजोर होगा और उसका जो दूध उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा। एक क्या है कि जो फर्श है वो ऊंचा और ढलानदार होना चाहिए ताकि जो पानी और मलमूत्र है वो एक जगह इकट्ठा ना हो, सारा का सारा बाहर निकल जाए। और जो पशुशाला है वो हवादार होनी चाहिए, यानी वहां पे जो वेंटिलेशन है, हवा का आदान प्रदान है, वो बराबर होना चाहिए ताकि पशु बाहर की ताजी हवा ले सके। एक है वहां पे कीचड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो आश्रय व्यवस्था में अपने को ध्यान रखनी थी। अब अपन बात कर रहे हैं उसकी स्वच्छता और संक्रमण में कि क्या होना चाहिए कि स्वच्छता और संक्रमण का अच्छे से नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए पशुशाला की क्या है कि रोजाना सफाई होनी चाहिए, मच्छर मक्खियों के नियंत्रण के लिए चूना या कीटनाशकों की उचित मात्रा में छिड़काव कर देना चाहिए अपने को। पानी के नाले की नियमित रूप से अपने को सफाई कर देनी चाहिए, और जो चारा और पानी है उसकी भी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, यानी गीला सड़ा गला चारा उसका उपयोग अपने को पशुओं के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मौसम के अनुसार संतुलित आहार भी उसको देना चाहिए। साफ और ताजा पानी पशु को हमेशा पिलाना चाहिए। और एक और बात अपन ध्यान रखना चाहिए कि जो परजीवी है उनका नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि जो अंदरूनी कीड़े हैं उनकी दवा जो वर्षा ऋतु के शुरुआत में ही दे देनी चाहिए, जिसको अपन डिवर्मिंग बोलते हैं। एक है कि भारी परजीवी जैसे कि चिचड़ी टिक आदि को मारने के लिए जो दवा है उसका छिड़काव करना चाहिए अपने पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार।
0: जी डॉक्टर साहब, बात करा आप डिवर्मिंग की, तो यो डिवर्मिंग काई है और जो अपना पशु है बाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
1: जी देखिए बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि डीवर्मिंग क्या है, ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई या पशुपालक भाई इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए डीवर्मिंग है क्या, पहले तो ये देखो, इसको बोलते हैं पेट के कीड़ों की दवा। यानी जो डीवर्मिंग है उसका तात्पर्य है कि जो पशुओं के पेट और उसके आंतों में रहने वाले जो परजीवी है जैसे कि गोलकर्मी हो गए, फीताकर्मी हो गए, फ्लूक हो गए आदि को मार के शरीर से बाहर निकालना, ताकि जो भी पोषण पशु ले रहा है उसका पूर्णतः उपयोग पशु खुद ही कर पाए। अन्यथा क्या होगा कि ये जो अंदरूनी कीड़े हैं वो पोषण के एक हिस्से का खुद उपयोग कर लेंगे, पशु पूर्णतः खुद के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा उनको। और जब पूर्णतः पशु जो खाना पानी ले रहा है उसका खुद उपयोग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसके दूध और मांस उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, और क्या होगा, पशु के खून की कमी होने लग जाएगी, पशु का प्रतिरक्षा तंत्र जो है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, और उसके दस्त लगने लग जाएंगे बार बार। कुल मिला के क्या है कि धीरे धीरे पशु का स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा और पशु अस्वस्थ होने लग जाएगा। इससे सीधा आर्थिक नुकसान होगा किसान भाई को, क्योंकि जब दूध उत्पादन कम हो जाएगा तो वो सीधा का सीधा आर्थिक नुकसान पे जाता है। तो अपन क्या है कि

0: अब ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पशु है उसको हर 6 महीने में एक बार पेट के कीड़े की दवाई जरूर देनी चाहिए, और जो बछड़े छोटे बछड़े बछड़ियां हैं उनको प्रत्येक 3 माह में एक बार देनी चाहिए। और इसकी डोज कितनी देनी चाहिए खुद के हिसाब से नहीं, ये पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही देना चाहिए, क्योंकि ये जो डीवर्मिंग की दवाई है कि बॉडी जो कितना वजन है शरीर का उसके अनुसार ही दी जाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो डीवर्मिंग है, डीवर्मिंग का मतलब हो गया कि आंतरिक कीड़ों से बिल्कुल छुटकारा मिलना, और यदि आंतरिक कीड़ों से सारा छुटकारा मिल गया तो पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ हो गया तो पशु का उत्पादन भी बहुत बढ़ जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, तो पशुपालक भाई बहन जो आपने सुन रहा है, तो डीवर्मिंग कहीं अपना पशु ना आपने देना चाहिए कितना समय का अंतराल में, तो सारा ध्यान रखो, और बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दे रहा है। डॉक्टर साहब, टीकाकरण की जब आप बात बताया, सावचेती बताया और कद कद लगवाना चाहिए ये आप बताया, तो आप लंपी स्किन रोग का बारे में भी बताया, और आप गेल का दिना की बात करा, तो लंपी स्किन जो रोग है वो अपना पशु में इतना फैल गया हो कि एक तरीके से महामारी का रूप में आप ई रोग ने देखा। तो सर, अब वर्तमान की अगर आप बात करा, तो एकाद जो मामला है लंपी स्किन का वे आपने देख बने मिल ही रहा है
0: जी।
1: तो वे कौन कौन सी सावचेती है जो आप रखा या के बचाव करा ताकि यो जो लंपी स्किन रोग है वर्तमान समय में वापस अपनो प्रकोप नहीं फैला सके या पशु में वापस यो नहीं फैल सके।
0: देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखो, पहले तो लंपी स्किन रोग है क्या? ये लंपी स्किन रोग एक वायरस जनित रोग है जो कि मुख्य रूप से गाय और भैंस में फैलता है। ये रोग मुख्य रूप से पशुओं की त्वचा को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ ये जो पशुओं में लिम्फ नोड होते हैं और आंतरिक जो अंग होते हैं उनको भी एक हद तक प्रभावित करता है। ये रोग मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, जू आदि के द्वारा फैलता है, साथ ही संक्रमित पशु के संपर्क में आने से तथा दूषित चारे व पानी के सेवन से भी फैल सकता है। तो ये जब किसान ये जब रोग होता है तो किसान भाई इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके कुछ लक्षण है, जैसे कि 104 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा का बुखार आता है गाय या भैंस को, त्वचा पर छोटी छोटी बहुत सारी गांठें बन जाती है, और एक समय के बाद ये गांठें फूटने लग जाती है, और इस समय वर्षा ऋतु में ये मक्खियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये मक्खियां वहां बैठ के अंडे दे देती है और वहां पे फिर कीड़े पड़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या है कि नाक और मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाता है गाय भैंस के, आंखों से भी पानी आता है, दूध के उत्पादन में भारी गिरावट होती है, यानी जो दूध यदि कोई गाय या भैंस से 4 लीटर दूध दे रही है तो 2 लीटर से भी नीचे तक आ जाएगी, और इसमें क्या होता है कि भूख लगना बंद हो जाती है जानवर को। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? इसके बचाव के लिए पहले तो टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावी तरीका है, बचाव में साबित हो सकता है। इसमें क्या है कि हर 6 माह की उम्र से ऊपर की जो भी पशु है उन सभी पशुओं को टीका लगवा देना चाहिए। मच्छर मक्खियां हैं उनका नियंत्रण होना चाहिए ताकि एक जानवर से दूसरे जानवर तक वो बीमारी पहुंच नहीं पाए। संक्रमित पशु को अलग ही रखना चाहिए ताकि जो स्वस्थ पशु है उसमें उस बीमारी का जो वायरस है वो नहीं पहुंच पाए। और यदि कुछ तरह के लक्षण दिखते हैं तो पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए बिना किसी देरी के।
1: वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण, ये महत्वपूर्ण विषय माथे आपने जानकारी दिया। डॉक्टर श्री राम करीर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर PGIVER जयपुर में आप पदस्थापित हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो तक आया और पशुपालक भाई बहना ने, श्रोतावा ने और करसा भाई बहना ने इतनी महती जानकारी आप दिया, एक ताई आप रो घना मानसू, धन्यवाद सा।
2: और प्रभु भाई धन्यवाद आपा भी देवा मधुबेन ने भी और डॉक्टर श्री राम करीर ने भी, और धन्यवाद स्वरूप खेलो या मनोरंजन के लिए खेलो एक गीत आपा भी सुना और या ने भी सुनावा और सगला श्रोता भी सुनेला।
3: बिल्कुल
4: मारी सदा सुहागण नारे, मारी सदा सुहागण नारे, माला तिरो नावलियो तो फता मरु नाचारे, मारी सदा सुहागण नारे।

Thank you.

हो मलेरो फेरो बहानो तन्ने भावे सेले मारी सदा तुहागर नारे मारी सदा तुहागर नारे माला सिरो नावलियो तो धक्का मरू लाचार मारी सदा तुहागर नारे मारी सदा तुहागर नारे माला सिरो नावलियो तो धक्का

0: प्रभु भाई घणो ही जोरदार गीत आप सुनाया और उम्मीद से सगड़ा ने पसंद भी आयो लो अरब स्टूडियो की घड़ी इशारो कर रही है कि आज को जी को कार्यक्रम छे खेती बाड़ी को टाइम पूरा हो तो जा रहे छे तो दिराओ आज्ञा आशा ने
1: और प्रभु दयाल ने
0: चालान करा राम राम सा।

0: अब आपने सुना कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा संसद की साप्ताहिक समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी है, अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक है पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में

विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश

नेताओं ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया।

0: विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आपने सुना संसद में साप्ताहिक गतिविधियों की समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। रात के 8:15 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत शोर इन द सिटी फिल्म से, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और तोचीर रैना की। गीत को लिखा है समीर एंड अदल ने और संगीत दिया सचिन जिगर ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत कुछ न कहो फिल्म से, आवाज उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत दिया शंकर एहसान दोए ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म ये जवानी है दीवानी। आवाज है श्रीराम और शिल्पा राव की, संगीत के बोल है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। इस समय रात के 8:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन हमारे दिल्ली केंद्र से।

स्पोर्ट्स एंड के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं नए फ्लेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैंप के साथ खेल की हर बात।

0: शर्मा ताइपी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। ओंटारियो में विश्व स्कॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम पांचवें स्थान पर रही और गुवाहाटी में डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत के साथ शुरुआत की।
1: खेलों के आज 10वें दिन भारत ने अब तक 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में अब तक 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया है। पैरा शॉटपुट के F57 वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है। पुरुष ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का
3: भारतीय मुक्केबाजों से जैसी उम्मीद थी वैसी ही शुरुआत मिली। महिला मुक्केबाजों ने महज 30 मिनट में 2 गोल्ड देश को दिलाए। पहले प्रीति पवार और फिर जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्डन पंच लगाए। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से फाइनल बाउट जीती। SEC हॉल 5 में पहले राउंड में सभी 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में 10-10 अंक दिए। दूसरे राउंड में एक बार फिर प्रीति ने सभी जजों से पूरे अंक हासिल किए। एक ओर प्रीति के हर एक पंच में दम दिख रहा था तो दूसरी तरफ डेलगाडो के पंच सही लैंड नहीं हो रहे थे। तीसरे राउंड में फिर प्रीति ने अपनी पावर दिखाते हुए सभी 5 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए गोल्ड सुनिश्चित किया। उन्होंने इस गोल्ड को खास बताया।
4: I am really excited and so happy that I won gold medal here. I just gave my best. Definitely, I am aiming for LA 2028 and I hope and wish that I'll be part of LA 2028 and give my best for India. Thank you so much everyone for supporting me and motivating me. Keep supporting, keep motivating me.
3: वहीं जैस्मीन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दर्न आइलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहला राउंड 3-2 से जैस्मीन के पक्ष में रहा था, लेकिन अगले राउंड में जैस्मीन पूरी तरह से विपक्षी बॉक्सर पर हावी नजर आई और 5 जजों ने फैसला उनके पक्ष में दिया। जैस्मीन ने तीसरा राउंड भी 4-1 से अपने नाम करते हुए देश को 7वां गोल्ड दिलाया। उन्होंने यह पदक देश को समर्पित किया।
4: आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू माई कंट्री इंडिया एंड द पीपल हु सपोर्ट्स मी थ्रू आउट माई होल जर्नी। दिस इज फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स एंड वी क्रिएट अ हिस्ट्री। वी ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस मोमेंट एंड वी डिड दिस फॉर आवर कंट्री। वी आर वेरी हैप्पी। माई एम इज टू गो इन ओलंपिक एंड आई विल गिव माई बेस्ट देयर एंड ऑल्सो वन मेडल फॉर माई कंट्री।
3: लेकिन पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह मानदेन गबम का जादू ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर जॉय डिस्किन के खिलाफ नहीं चला। जादूमणि ने अच्छी शुरुआत की और पहले राउंड में 3-2 से जीत हासिल की, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। दूसरा राउंड ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर ने 5-0 से अपने नाम किया। तीसरे राउंड में एक बार फिर विरोधी मुक्केबाज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत हासिल की। इस हार से जादूमणि को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
5: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कमोनी गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगर कंपटीशन में और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में सबसे मेडल लेंगे, फिर मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और JFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
3: उधर आज रात महिला 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन भी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है लवलीना ने फाइनल मुकाबले से पहले।
6: फाइनल के लिए मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ तो फाइनल और भी ज्यादा टफ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार गोल्ड लेके जा सकती हूँ क्योंकि हम लोग का ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ है तो जरूर इस बार गोल्ड ले पाएंगे।
3: एथलेटिक्स में भी आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। दिन का तीसरा गोल्ड एथलेटिक्स से ही आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 13.40 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुआल भी उनसे ज्यादा दूर नहीं रहे। शुभम को 13.28 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर की लंबी छलांग भरते हुए रजत पदक पे अपना नाम लिखाया। उधर सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने 16.52 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। हम आपको

0: बता दें कि पैरा स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने का लंबा इंतजार खत्म हुआ और 3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य समेत 6 पदक झोली में आए। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। पैरा खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 1 गेम्स रिकॉर्ड और 1 एशियन रिकॉर्ड बनाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को बॉक्सिंग में अभी और स्वर्ण पदकों की उम्मीद है। महिला वर्ग में कुछ ही देर में साक्षी 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रिंग में उतरेंगी। प्रिया 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। पुरुषों के वर्ग में सचिन 60 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगे। पुरुषों के पोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ में गुरवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स 4x400 मीटर रिले में भारतीय टीम पदक जीतने की कोशिश करेगी। जूडो में उन्नति शर्मा महिला 63 किलोग्राम और हर्ष टोकस पुरुष 81 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। बॉल्स में महिला सिंगल्स के सेक्शनल ग्रुप सी के सेक्शन सी में नैन मोनी सैकिया दक्षिण अफ्रीका की ब्रिजेट हर्सेल मान से मुकाबला करेंगी।
2: वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में कल 9वां दिन भी भारत के लिए बेहद यादगार रहा। खासकर जूडो खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इंजरी से वापस लौटे नीरज चोपड़ा ने भी जैवलिन थ्रो में बेहतर प्रदर्शन किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का इंतजार था। इस लंबे इंतजार को आखिरकार अस्मिता डे ने खत्म किया। त्रिपुरा की 23 वर्ष की अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में शानदार वापसी करते हुए केरला की हेडी क्वाच को हराया। मुकाबले की शुरुआत में उन्होंने 1 अंक गंवाया और पेनल्टी भी मिली, लेकिन आक्रामक खेल जारी रखते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। गोल्डन स्कोर में अस्मिता ने निर्णायक अंक हासिल कर इतिहास रचा। अस्मिता ने बताया कि उन्हें गोल्ड जीतने का पहले से भरोसा था।
4: मुझे कभी ये नहीं

0: और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
1: जूडो में ही 23 साल के हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को वाजा अरी से हराया। 4 मिनट तक चले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को अंक नहीं मिले, लेकिन अंतिम मिनट में हर्ष ने निर्णायक दांव खेलकर बढ़त बनाई और गोल्ड अपने नाम कर लिया। गोल्ड जीतने के बाद हर्ष काफी उत्साहित थे।
2: आई वर्क हार्ड फॉर दिस मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टुडे फॉर विनिंग गोल्ड हियर।
1: महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्य को इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक के खिलाफ हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। करीब 7 मिनट तक चले मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी अंक नहीं बना सका, लेकिन मैच में तीसरी वार्निंग मिलने के कारण यामिनी को शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 85.83 मीटर तक भाला फेंका। अपने इस प्रदर्शन से नीरज संतुष्ट नजर आए।
3: मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी है, आज सिल्वर मेडल है और अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे और बढ़ाएं।
1: इसी स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। कठिन मुकाबले के बीच कांस्य जीत कर भी यशवीर खुश दिखाई दिए।
4: मेरा पहला मेडल इंटरनेशनल में और मुझे ज्यादा खुशी है, सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, फैमिली ने।
1: एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर ने 10 अलग अलग इवेंट्स वाले डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा है। वो कॉमनवेल्थ में इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनकी बातों से इस मेडल का महत्व समझा जा सकता है।
5: It's pretty good actually. Obviously special. 4 years ago I had a bronze in the high jump and 4 years later to be able to win a medal in decathlon. I think it's just a dream come true. There's a lot of scope for improvement and between now and LA that's the goal is to try and you know fix those events, get them up to standard and hopefully be competitive then.
1: हम आपको बता दें कि 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ वाले सभी इवेंट के आधार पर टोटल रैंकिंग बनती है। इस रैंकिंग के टॉप 3 प्लेयर्स को मेडल दिए जाते हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
6: उधर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
1: और प्रशांत, अब कॉमनवेल्थ गेम्स से चलते हैं दूसरे खेलों की तरफ। भारत की तन्वी शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में यू सुन को हराया। वे टूर्नामेंट में अब एकमात्र भारतीय चुनौती हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन की नई उम्मीद तन्वी ने BWF सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत के खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। आज ताइपे अरेना में दुनिया की 34वीं नंबर की खिलाड़ी तन्वी ने अपनी सी काफी ऊंची रैंकिंग वाली पांचवीं मान्यता प्राप्त वांग यू सुन पर सिर्फ 33 मिनट में आसानी से 21-17, 21-11 से जीत हासिल की और शान से खिताबी मुकाबले के लिए कदम बढ़ाया। खिताब के लिए कल उनकी टक्कर वियतनाम की गुयेन थुई लिन से होगी। अंतिम चार के मैच में तन्वी पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आई और उन्होंने यू सुन पर एक बार जो पकड़ बनाई तो फिर विरोधी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही तन्वी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई है। खासकर पिछले दो वर्षों में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। पिछले साल वे ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 दोनों टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज खिताब भी जीता था।
0: और अब धर्मेंद्र स्क्वॉश पर भी बात कर लेते हैं। कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने पांचवें से छठवें स्थान के प्लेऑफ में इंग्लैंड को 2-0 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया। रुद्र सिंह ने रेखा केमिसी को 11-5, 8-11, 11-5, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद सानवी कलंकी ने एव पार्किंग पर 11-6, 11-9, 11-9 से जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी। भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था।
1: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मेजबान देश के 8 खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला सिंगल्स वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में चारों स्थानों पर कब्जा किया। अब सभी अंतिम चार मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही होंगे। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी और घरेलू चुनौती को पार करते हुए सेमीफाइनल के चारों स्थान पर कब्जा कर लिया।
0: पर अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, गुवाहाटी में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज पिछले विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ के शुरुआती मुकाबले में बोडोलैंड एफसी को 6-0 से हराया। विजेता टीम के लिए अलाइद्दीन अजराई ने हैट्रिक लगाई। बेहतरीन प्रदर्शन किया है धर्मेंद्र, गुवाहाटी में खिलाड़ियों ने।
1: जी, और अब तो समय ये भी कह रहा है कि श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो चला है। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र और मेरे साथी प्रशांत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा

0: पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड

0: को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
1: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और

0: कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में और ज्यादा फोकस करूंगा और आने वाला कंपटीशन में मेडल लेंगे। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और JFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुरवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लंगोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल राजशेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का ही।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो दी बहार आई बाहों में खिली पहनी,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से। आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।
1: तड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई, हट गया मन से लिपट अनजाना। वो नील अंग सा रूप रंग ले, सघन समाधि प्रेम भंग, अंग

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर

0: मैं गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

पैसे को जवानी मेरी तरसे, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, कब जाएगी गरीबी मेरे

0: जी नाम जी।
1: और लॉटरी लगी 1.25 लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे, बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आम तौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर ये फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

विचित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते। वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002, दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया।

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर। रात्रि के 10 बजे अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनवाएंगे फिल्म संगीत का पहला गीत फिल्म पाकीज़ा से। लता जी और मोहम्मद रफी की मिली जुली आवाजें। कैफी भोपाली से लिखा गीत सुनेंगे गुलाम मोहम्मद के संगीत में।

ये गीत अभी आप फील को वो कौन थे थे लता जी की आवाज में सुन रहे हैं। राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत है और मदन मोहन का संगीत है।

मोहम्मद रफी के गाय से गीत के साथ फिल्म संगीत भी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM नाहल चैनल से बोल रहे हैं, FM 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Ravi Kapoor. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और

0: चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 106.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज के प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।